मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली

0: में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विम्बलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विम्बलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं प्रकाश परनेकर की गाई इस मातृ वंदना से। गीत सुभद्रा कुमारी चौहान का है।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव भजन। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

इसी गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: विवरण। आज सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे फैज मोहम्मद से काव्य पाठ। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 8:30 पर कवि प्रदीप से अनिता कुमारी की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। लोकरंग में सुबह नौ बजे आप सुनेंगे उर्मिला पांडे के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर एक ही संगीतकार के अंतर्गत सुनिए अनु मलिक के संगीतबद्ध कुछ फिल्म गीत। 10:05 पर होगा मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। 10:30 पर श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे। आज शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके। इसके अलावा तत्व स्वरूप शुक्ला से काव्य पाठ। 5:40 पर होगा फिल्म संगीत। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:30 पर लोकधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे रज्जू राजा चौहान के गाए बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुने श्रोताओं के फोन कॉल्स ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी। इस विषय पर डॉक्टर रुचि से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा तोए नहीं निबाउत तोरे कुलखा आ निबाउत। रात्रि 8:00 भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर होगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर पब्लिक स्पीच और 10:00 मन भावन कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। तो ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: भैया रोज जिन्हें अपने आजकल मुर्गी पाल रहे हैं तो उकिलाने उन्हें बहुत सारी बातों को जानबो जरूरी होते। कैसे कि मुर्गी पालन अपनी खेती किसानी के संगे संगे एक मुख्य व्यवसाय है जो कि अपने किसान भैया गांव में करते हैं बड़े बड़े शहरों में भी करते हैं। अकेले उन्हें मुर्गी पालन करने हैं तो सबसे पहले चूजन को कृत्रिम पालन कैसे करें जो जानबो जरूरी होते। अगर उनके पास जो जानकारी नहीं है कि चूजन को रख रखाव कैसे करें तो उन्हें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है या नुकसान उठावो पड़ सकते है। अब मुर्गी पालन सबसे पहले जब करने हैं तो भी चूजा कहाँ से ले आए जो भी उन्हें पता बहुत चाहिए तो शासकीय मुर्गी पालन केंद्र बहुत जगह पे हैं और बहुत सारे अपने प्राइवेट भैया भी मुर्गी पालन करे हैं जो चूजा अपने बच्चा निकाल के हैचरी से बेचते हैं। भी एक दिन दो दिन पांच दिन या एक हफ्ता की भी चूजा बाजार में उन्हें बेचत हैं या अपने जिन भैया का पालन होते वे उनके पास अपनों एक आर्डर भेज दिए थे कि हमें इतने चूजा पाल रहे हैं जिसे कि वे उन्हें मंगा लेते। अब मुर्गी पालन के लाने सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि इनको बाड़ा तो जितने पे अपन का चूजा पाल रहे हैं उतने पे ये बात को ध्यान रखें कि नमी ना हो सीधी धूप ना पहुंचत हो और सर्दी गर्मी और बरसात से बचाव कर वो बहुत जरूरी है। कैसे वे नन्हे नन्हे चूजा है अगर उन्हें अपन ने न बचाओ इन बातों से तो उनके मरने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होते हो। अब जब बच्चा पाल रहे हैं चूजा पाल रहे हैं तो उनके दाना की व्यवस्था बहुत जरूरी होते है। तो इनके लाने एक संतुलित जो दाना होते वो बनावो जरूरी होते या बाजारन में अपने मिलत है तो पंचभैया होते से लेके उनका दे। अगर सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो जिन बाड़न में या जिन घरन में अपने चूजा पाल रहे हैं तो उतने पर रात के या सवेरे भुंसरा की बेरा फट्टा की टटियां डाल दें

जिससे कि सीधी हवा ना लगे और ठंडक ना हो। बल्ब नीचे करके शेड में लगाकर लटका दें, जिससे कि उन्हें गर्मी अगर जितनी चाहन है तो उनके नीचे आके भी ले सकते हैं। अब जैसे उन्हें अपने चूजा पाल रहे हैं, उते पे बुरादा कितनों डाल रहे हैं इको उन्हें ज्ञान बहुत चाहिए। कैसे अगर जहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं और चूजा पाल रहे हैं, अगर जहाँ दिन भर घूम रहे हैं बीट करने हैं उन्हें, तो उनके पाउंड में अगर सन है तो उन्हें बीमारी हो सकता है, काक्सीडियोसिस की बीमारी है या और तमाम बीमारी हो जाती है, चेचक की बीमारी है या दस्त की बीमारी हो जाते है, तो जिसे कि उन्हें पालवे के लाने कम से कम 4-6 इंच बुरादा उके कमरा में डलो रह चुकी है, जिनमें कि दिन भर घूम के उनके पांव सूखे रहें या कोई परेशानी ना हो। अगर ज्यादा भी देख रहे हैं कि उते पे बीट इकट्ठी हो रही है तो ऊखा थोड़ा सा झाड़ू से साफ भी कर सकते हैं। अब उन्हें एक काम को ध्यान रखने हैं कि उन्हें संतुलित आहार देने हैं, अपने बाजार में जाके ऐसा दाना खरीदने जिससे कि वे जल्दी से जल्दी

0: उनके पांव सूखे रहें या कोई परेशानी ना हो। अगर ज्यादा भी देख रहे हैं कि उत पे बीट इकट्ठी हो रही है तो ऊखा थोड़ा सा झाड़ू से साफ भी कर सकते हैं। अब उन्हें एक काम को ध्यान रखने हैं कि उन्हें संतुलित आहार देने हैं, अपने बाजार में जाके ऐसो दाना खरीदने हैं जिससे कि वे जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। अभी के लिए बहुत सारी नस्लें हैं बाजार में आ गई हैं, इनमें एक ब्रायलर हूथ है जो सबसे ज्यादा बाजार में बिकत है, जो मांस को ज्यादा लोग खाते हैं, तो वो जल्दी बढ़ा थे। लगभग 30-35 दिन में वो 900 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक की वजन की हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चा जो बड़े हो रहे हैं उन्हें छांट लें या जब बेचने हैं तो भी निकालें और छोटे बच्चा बचा लें, जिसे कि जब बड़े बच्चे आए से चले जाए चूजा बिक जाए हैं तो उन्हें फिर भी लाने जगह काफी मिल जाए है। कितनों उन्हें चूजा पाल रहे हैं, कितनी मात्रा में उन्हें 100, 200, 500, 1000 या 2000, 10000, 5000 जितनी भी संख्या में उन्हें पाल रहे हैं उनके हिसाब से पहले तो मुर्गी खाना बना वो जरूरी होते। कैसे कि अगर उनके रखरखाव में कोई परेशानी अगर आ रही है तो उनकी बढ़वा रुक जाते हैं, तमाम बीमारी उन्हें घेरन लगती हैं। तो इको ध्यान पहले रखें कि उन्हें कितनी संख्या में चूजा पाल के अपनों व्यापार करने हैं। अगर भैया हल्लू करने बात को ध्यान रखो और उन्हें संतुलित आहार दो, दाना पानी अच्छो दो, तो उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड, स्वर वाणी जयराम का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अहंकार और अपने आप को ही सब कुछ समझना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी प्रकार खुदी और घमंड एक दूसरे के पर्याय हैं। घमंड के कारण ही मनुष्य अपने आप को भुला देता है और स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है। ऐसे लोगों को जीवन में अनेक बार नीचा देखना पड़ता है। जो दूसरे के अस्तित्व को महत्व नहीं देते वे सत्य को निश्चित ही भुला बैठते हैं। जो व्यक्ति दूसरे को तुच्छ समझते हैं और अपनी हस्ती को ही सब कुछ मानने लगते हैं वे दूसरों का अपमान भी करते देखे गए हैं। अपने को सर्वगुण संपन्न समझना और दूसरों को अपने आगे बिल्कुल शून्य समझना नितांत मूर्खता एवं बुद्धिहीनता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भीतर से बिल्कुल खाली होता है वही खुददारी और घमंड से भरा हुआ होता है। आवाज करने वाली प्रत्येक वस्तु भीतर से खोखली होती है। ढोलक अथवा ढोल जितने ही भीतर से खाली होते हैं उतनी ही जोर से आवाज करते हैं। उनकी आंतरिक शून्यता ही उनके नाद का कारण होती है। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी अल्पज्ञानी अथवा मूर्ख व्यक्ति भी अपनी डींगे हांकता है, अधिक पड़बोला होता है। अपने अंदर की शून्यता को छिपाने के लिए व्यक्ति अधिक बोलता है और दूसरे को अस्तित्वहीन सिद्ध करने में लगा रहता है। जबकि भीतर से ज्ञान से भरा व्यक्ति अधिक नहीं बोलता, दूसरों की कमियां नहीं निकालता, महत्वहीन नहीं सिद्ध करता और न ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का ढोंग करता है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तथा दूसरों के महत्व को नकारते रहते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलने का असफल प्रयास करते रहते हैं। अपने अहम को तुष्ट करने के प्रयास में स्वयं ही नीचे गिर जाते हैं और उपहास का कारण बनने लगते हैं। अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस के लोगों की आलोचना करके अपने आप को उनसे श्रेष्ठ बताकर अपना स्वयं का ही अपमान कराते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम में ही सारी कमियां हैं। कोई भी भारी या भरी वस्तु आवाज नहीं करती। ज्ञान से भरा व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकता। जितना अधिक ज्ञानी होगा उतना ही कम बोलेगा। वो तो अपने काम में लगा रहेगा, दूसरों की चिंता परवाह नहीं करेगा, अपने सुकृत्यों से दूसरों का प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खान पान रहन सहन कार्य व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि अमुक या पड़ोसी हमारे सामने कुछ भी नहीं है तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना छोटा है। जो कहता है कि हम छोटों को मुंह नहीं लगाते समझना चाहिए कि वो कितना निम्न और तुच्छ है। कुछ पाकर घमंड में आ जाना निम्नता की सबसे बड़ी निशानी है। ज्यों रही

0: इन ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अर्थात ओछे व्यक्ति को कुछ मिल भी जाए तो वो घमंड से इतराने लगता है। जिस प्रकार शतरंज का पैदल यदि मोहरा बन जाए तो उसकी चाल बदल जाती है। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है, अपने आचरण और चरित्र को ही उत्तम मानने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक पतन की शुरुआत हो गई है। रावण, दुर्योधन, कंस अथवा किसी भी सर्वसंपन्न सत्ताधारी का पतन वहीं से प्रारंभ हो गया था जब से उन्हें घमंड आ गया था। घमंड सदैव पतनकारी होता है, चाहे वो बुद्धि, बल, ज्ञान, ताकत अथवा किसी अन्य का क्यों न हो। खुददारी, खुदी, अहंकार और घमंड एक ही प्रकार के दुर्गुण के भिन्न भिन्न नाम और स्वरूप हैं। ऐसे लोगों को नीचा देखकर पतित होना पड़ता है, क्योंकि वे सत्य से परे हो जाते हैं अथवा उसे भुला देते हैं। सत्य तो यही है कि मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम और सच्चरित्रता का जीवन जीना, दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत प्रयोजन हेतु उपयोग करना, न्यायपूर्ण ईमानदारी की कमाई से गुजारा करना, अपने आराध्य ईश्वर का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव रखकर विचलित न होना, दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन जीना ही श्रेष्ठकर है। क्योंकि जब तक हमें अहंकार की भावना रहेगी, तब तक त्याग की भावना उदित नहीं हो सकती। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत दिखने से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल, तेरी रजा क्या है। इसलिए अपने अंदर बैठे स्वाभिमान को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, शक्तियों को जागृत करके निरंतर शुभ, नेक तथा परोपकारी कार्यों में जुट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, अपने अंतर्मन में छिपी शक्तियों को पहचानो और ये समझो कि तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तथा निर्माण की राह पर चल पड़ो। जो अपनी सहायता स्वयं करता है, ईश्वर उसकी ही सहायता करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। समाचारों की श्रृंखला में संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार और उसके उपरांत प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली और भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रुक करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुभियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। सन्धेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नव देहल्याम् आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिषु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनम् राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एन

0: CD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्याम् वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायाम् श्रद्धालूनाम् महत् सम्मर्दः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मंदिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता संजाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनम्, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रि दिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में

0: शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his three-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
2: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद हो चुकी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अडाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षो में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित

0: करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि यह प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिन्दू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह रावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं, जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
5: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
4: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने

0: बताया कि
1: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
2: प्रदेश पुलिस के राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रूडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मॉनसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हिंदी में एक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए फैज मोहम्मद से हिंदी का वे पाठ।
1: मैं सबसे पहले कथा के चार मिसरे हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए।

0: करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: हिंदी में कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फैज मोहम्मद से हिंदी काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में। फिल्म है नागिन और नगीना। गीत लिखा है आर के पाषाण ने और संगीतबद्ध किया है जीतू तपन ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में आगे सुनिए आखिरी अदालत फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, गीत अनजान का और संगीत अनु मलिक का।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: पराया घर, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज में, गीत हसन कमाल का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं प्यार मोहब्बत फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार को। फिल्म है इंसाफ कौन करेगा, गीत SH बिहारी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य

0: दर्शन प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय

0: पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस

0: आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon.

0: रामचंद्र द्विवेदी, अवस्था 82 वर्ष, दुबली पतली वृद्धावस्था से जर्जर काया, मगर ये अवस्था भी इस गरिमा में व्यक्तित्व के चेहरे का तेज और वाणी का आत्मविश्वास मिटा नहीं पाई। आप हैं फिल्मों के महान गीतकार कवि प्रदीप, जिनसे श्रोताओं को मिलवाने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। दादा, हमारी और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको प्रणाम। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका शुरुआती जीवन कहाँ बीता, कहाँ आपने जन्म लिया, कहाँ आपने शिक्षा पाई?
1: जन्म तो मेरा मध्य प्रदेश में हुआ, एक छोटे से किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ। और जैसा होता है शिक्षा दिशा में, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद हमारे माता पिता ने ये देखा है कि ये कुछ ठीक तरह से पढ़ता पढ़ाता नहीं है। हम शुरू से ही तुनक मिजाज आदमी थे, बात बात में हम नाराज हो जाते थे, वो परेशान थे हमारे घर वाले लोग। तो हमारे एक बड़े भाई इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा छोटा भाई जो है पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं, सबसे झगड़ा कर लेता है मास्टरों से और चला आता है और कहता है कि हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है, तुम अपने पास बुला लो। तो हमको इलाहाबाद बुला लिया। बुला क्या लिया, परमात्मा ने इस प्रकार का मेरे लिए सिनेरियो बनाया। तो इलाहाबाद जो है वो मध्य प्रदेश से डिफरेंट टाइप का वातावरण वहां था, साहित्यिक वातावरण था और समाज भी अच्छा था, पढ़ा लिखा था, हिंदी का खूब प्रचार था वहां। तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए, ऐसे बच्चों के संपर्क में आए, क्योंकि हम तो विद्यार्थी थे कि जो अपने घर पे ले जाते थे। तो हमारी आवाज अच्छी थी और हम स्कूल में प्रार्थना

किया करते थे, लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम प्रार्थना सब लोगों को सिखाओ। तो एक पुराने जमाने में बहुत पुरानी एक प्रार्थना गाते थे लोग, वो इस प्रकार की कुछ थी।

0: संक्षेप में क्या हुआ कि लोगों ने हमको कवि बना दिया। आवाज अच्छी थी, कविता फविता तो ऑर्डिनरी करते थे हम, लेकिन आवाज की वजह से जमा देते थे नंबर वन। उम्र हमारी छोटी थी, इसलिए लोगों ने कहा कितनी कम उम्र का लड़का कितनी अच्छी कविता लिखता है, ये तो इसको कुछ इनाम देना चाहिए। उन दिनों में चांदी वांदी बहुत सस्ती थी, तो कोई रजत पदक दे देता था, कोई पुस्तक दे देता था, कुछ ये देता था, हमारा उत्साह बढ़ता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने लोगों के संपर्क में आते रहे तो कविता करते रहे।
1: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी दादा?
0: उस वक्त हमारी उम्र रही होगी करीब करीब समझिएगा 17-18 बरस की। उसके बाद हमने मैट्रिक किया वहीं इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में ही हमने इंटर किया, और इंटर होने के बाद हमने किसी कारण से हमको जाना पड़ा, भाई साहब के कारण लखनऊ जाना पड़ा, तो हम लखनऊ चले आए। तो लखनऊ में इलाहाबाद से भी ज्यादा हमको साहित्यिक वातावरण मिला, तो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ा दिया लोगों ने। हम यानी कवि सम्मेलन में आने जाने लग गए और कविताएं जमा देते थे। हम एक प्रकार के ट्रस्टवर्दी आदमी गिने जाते थे कि भई इसको बुलाओगे तो कम से कम ये कवि सम्मेलन तो जमा देगा। लेकिन भगवान को कुछ दूसरा ही मंजूर था, इसलिए एक बरस के बाद ही मैं कवि सम्मेलनों के चक्कर में इधर उधर जाता था ना, तो इलाहाबाद से लखनऊ गया, लखनऊ से मथुरा गया, मथुरा में एक सज्जन मिल गए, वो मुझे इलाहाबाद अपने अहमदाबाद ले आए, अहमदाबाद से किसी वजह से मुझे बम्बई आना पड़ा। बम्बई में लोगों को पता लगा कि एक लड़का जटा वाला बाल बाल रखता है, जरा हसीन सा है, इस तरह की मेरी फोटो थी ये, तो कविता बहुत अच्छी करता है, तो यहाँ मैंने कविता भी सुना दी लोगों को। अब हमको क्या पता कि वो जो कविता हमने सुनाई वो हमारा भाग्योदय करेगी। तो दूसरे दिन बॉम्बे टॉकीज की गाड़ी हमारे पास आती है कि कल आपके छोटे से कवि सम्मेलन के अंदर हम भी मौजूद थे। मैंने कहा आप कौन है? तो मैं बॉम्बे टॉकीज का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, और मैंने अपने बॉस से कहा कि एक लड़का आया हुआ है 24 बरस का, बड़े बड़े उसके बाल हैं, डांसर जैसा लगता है, और नशीली आंखें हैं उसकी, तो अच्छी कविता करता है, तो उसको ले आओ।
1: दादा आपकी सामने तस्वीर देख रही हूँ, इतने खूबसूरत आप रहे, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो हीरो बना देते हैं फिल्मों में?
0: नहीं, शुरू शुरू में जब मुझे बॉम्बे टॉकीज में बुलाया गया और जो साहब ले गए थे वो प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने तो कहा कि कविताएं सुननी है हमारे बॉस को, तो वो हिमांशु राय थे, देवी का रानी के हस्बैंड, तो उन लोगों ने मुझे पसंद किया। तो मैं अंदर अंदर कुछ यही सोच रहा था कि शायद मेरी शक्ल अच्छी है, बड़े बड़े बाल भी थे मेरे, उन दिनों फैशन था, तो शायद मुझे कोई हीरो वीरो का चांस दें। एक उन्होंने कहा आपको तो गीत लिखना है, तो निराशा तो नहीं हुई मुझे, ये जरूर मैंने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो मुझे तो कुछ पता नहीं है कि सिनेमा के गीत कैसे लिखे जाते हैं, इतना जरूर मालूम है मुझे कि ये कुछ यानी तोड़ फोड़ है इसके अंदर, कुछ ताल से अलग, कुछ ताल के ऊपर से, कुछ कहीं से कुछ, ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो हम सब तुमको बता देंगे। एक ही बात का ध्यान रखना कि हम व्यवसाय में हैं, इसलिए स्पोकन लैंग्वेज के इस मीडियम

इस मीडियम में आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर बड़ी बात कहने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये उन्होंने मूल मंत्र बतलाया और वो मूल मंत्र हमको मानना पड़ा। तो हमने जो बाद में कविता करने के पहले जो चीजें हम लिखते थे संस्कृताइज्ड, वो भूल जाना पड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखा। तो पहला पिक्चर मैंने लिखा कंगन, उसमें अशोक कुमार हीरो था और लीला चिटनिस हीरोइन थी। भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि वो पिक्चर सिल्वर जुबली हो गया। तो सिल्वर जुबली हो गया तो हम तो हिट हो गए। सब जर्नलिस्ट लोग आकर पूछने लगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं और किधर है, और एक फोटो दो और फलाना करो और ये करो वो करो। तो हम तो ये लोगों की नजरों में आ गए, फोटो छपने लग गए हमारे। दूसरा पिक्चर हमने बंधन लिखा, उस

0: सब जर्नलिस्ट लोग आकर पूछने लगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं और किधर है, और एक फोटो दो, फलाना करो और ये करो वो करो। तो हम तो इन्हीं लोगों की नजरों में आ गए, फोटो छपने लग गए हमारे। दूसरा पिक्चर हमने बंधन लिखा, उस वो स्कूल की बैकग्राउंड का पिक्चर था, उसमें एक गाना मैंने लिखा था मार्चिंग सॉन्ग। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जब फिल्म लाइन ज्वाइन की तब हम लोग गुलाम थे, हमें आजादी मिली नहीं थी। ये 1939 की बात मैं आपको करता हूं। तो 1939 में तो कंगन मेरा निकला और सन 40 के अंदर मैंने एक गाना, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, दूर तेरा गांव और थके पांव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तो ये गाना इतना अधिक पॉपुलर हुआ बच्चों के अंदर कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने इस गाने को गाया। और भविष्य में एक बार जब मुझे पंडित जी से मिलने का मौका मिला, जवाहरलाल जी से, तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि ये गाना आपका लिखा हुआ है। मैंने कहा, तो कहा हमारी जो इंदू है, मतलब इंदिरा गांधी बाद में जो हुई, वो बानर सेना की वो निकालती थी प्रभात फेरी, और उसके अंदर वो गाती थी कि चलते रहे नौजवान, और बच्चे बच्चियां सब जो हैं पीछे कोरस में गाते थे।
1: तो ये आपकी देशभक्ति जो है ये गानों तक ही सीमित रही, या आपने कुछ आजादी की लड़ाई में कुछ और भी तरह से हिस्सा लिया?
0: भाई आजादी की लड़ाई में हमने हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन आजादी की लड़ाई के माहौल में हमने सांस ली, हम जीते रहे। हम जब इलाहाबाद के अंदर थे तो आपको बता दें कि उन्हीं दिनों चंद्रशेखर आजाद को शूट किया गया था, चारों तरफ लाखों आदमियों की भीड़ थी और गोलियां चल रही थी, और चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते वो धराशायी हो गया। तो प्रभावित तो हम होते थे, और ये भी मन के अंदर ये होता था कि अगर कोई सशक्त माध्यम हमको मिल जाए तो उसका सदुपयोग करें राष्ट्र के लिए और समाज के लिए। इसमें हमारी एक यानी इच्छा थी कि जब हमारे पास फिल्म लाइन है, तो फिल्म तो ऐसी चीज है कि एक कमरे में बैठ करके आप गाना लिखते हैं और आप करोड़ों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये इतनी पावरफुल माध्यम है। ये अंतर ये था कि आज टीवी भी है और फलाना भी है और ये भी है और वो भी है। पहले तो क्या था, फिल्म कंपनियां फिल्म बनाती थी, थिएटर में रिलीज होते थे, इसलिए हमारा पब्लिक के साथ डायरेक्ट अप्रोच होता था।
1: कहते हैं जब तक बंबई में आके आदमी चने नहीं खाता और फुटपाथ पे नहीं सोता, उसको अपने मनपसंद काम नहीं मिलता। बहुत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पर आकर कुछ भी हासिल करने के लिए, पर आप तो आए और आपको तुरंत काम मिल गया, मौका मिल गया, इसका मतलब संघर्ष आपको करना नहीं पड़ा।
0: बात क्या है कि संसार के अंदर जो कुछ भी चक्कर चलता है ऊपर वाले का चलता है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जो है वो जो चक्कर चलाता है उसी से सब कुछ होता है। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो मेरी पहली पिक्चर फेल हो जाती तो मुझे बॉम्बे टॉकीज वाले कह देते कि आप दूसरा काम ढूंढ लीजिएगा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आप यहाँ जम नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान मुझे जमाता गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि 30% मैंने मेहनत की और 70% मेरी तरफ से प्रभु ने दयालु बन करके और मुझे मदद की। मैं जो कुछ भी आज हूँ उसकी कृपा की वजह से हूँ।
1: ईश्वर की कृपा तो आप मानते हैं और आपने शुरू से ही कहा कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है, पर क्या आप किसी को गुरु भी मानते हैं?
0: नहीं, हम किसी को गुरु मानते नहीं है। आदमी खुद अपना गुरु होता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप गाना जब लिखते हैं तो आप फाइनल कैसे करते हैं, तो मुझे फाइनल

0: करना पड़ेगा, तो कोई एक मैंने रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है कि मैं अपने अंदर एक दूसरा प्रदीप छिपा हुआ है, उसको मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल करके मैं सामने बिठा देता हूँ कि भाई तू मेरा ही अंश है, मेरे सामने बैठ। अब मैंने एक चीज लिखी है, मैं तुझे सुनाता हूँ, तो तू मुझे चापूसी मत करना, सच्ची सच्ची बात बोलना मुझे। तो मैं स्वयं ही लिखता था और अपने ही स्वयं जो दूसरा जो प्रदीप है उससे मैं राय लेता था, कैसा लगा तुमको। अगर वो हंसता था तो मैं समझ जाता था कोई बात तो है जरूर। इसी तरह के सब गाने जो हैं मैंने इसी प्रकार से लिखे, चाहे वो है मेरे वतन के लोगों हो या कोई भी हो। मैं किसी से पूछने के लिए नहीं जाता था कि भाई मैंने एक गाना लिखा है सुनो जरा कैसा है, क्योंकि उसके अंदर कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता। हमको स्वयं ही सर्जन करना पड़ता है और हमको स्वयं ही निर्णय देना पड़ता है अपना।
1: कभी कभी बरस जो है वो पल में बीत जाते हैं और कभी एक पल जो है वो बरसों के बराबर हो जाता है। तो आपका जो ये गाना आपने लिखा ऐ मेरे वतन के लोगों, आप अभी आपने याद दिलाया तो मैं पूछने ही वाली थी आपसे, तो इस गाने को लिखने के पीछे क्या इतिहास रहा, कैसे आपके मन में ये कल्पना आई, क्योंकि ये गाना जो है ये एक अपने आप में पूरा इतिहास है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए।
0: सब्जेक्ट हमने लिया अपनी अंतर भावना से। नौशाद भाई ने एक गाना रिकॉर्ड कराया था मोहम्मद रफी साहब से, वो बहुत सुंदर गाना था वो, कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्या बात। इसी तरह से राज कपूर के पास वो गाना था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो उसमें मुकेश साहब जो हैं वो उनको बुकिंग कर दिया उन्होंने। किशोर कुमार ने भी कुछ किया, दूसरे भी किया, अब हमारे पास लड़कियां रह गई हैं। तो हमने ये सोचा कि अपना जो गाना है वो तो ब्रेवेडो का गाना तो है नहीं, वीर रस का। तो हमने कहा कि जब हम हमारे भाग्य में लता दीदी लिखी हुई है तो हम कोई करुण गाना दें। तो करुण गाने का की बात याद आते ही हमें लोगों के जो बलिदानी चेहरे हैं, भगत सिंह का बलिदानी चेहरा, चंद्रशेखर आजाद का बलिदानी चेहरा, और जिन लोगों ने देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के इनकलाब जिंदाबाद करके और फांसी के तख्ते पर जो लोग लटक गए थे, तो ऐसे लोगों की याद आई और उन लोगों को भी याद आई कि अभी अभी थोड़े बर महीने पहले चाइना के वॉर में भी ऐसा ही हुआ होगा, लोग गए थे अपने घर से वापस नहीं लौटे, क्योंकि 26 जनवरी को ये गाना होने वाला था। 26 जनवरी 1963 प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, जो भी उन दिनों बड़े बड़े नेता थे सब लोग थे। तो उनको पता नहीं था कि ये गाना जो है उनकी दुखती रख के ऊपर हाथ रख देगा, क्योंकि कहीं न कहीं पंडित जी तो बड़े नोबल आदमी थे, वो तो देवता स्वरूप थे, कहीं न कहीं उनकी दुखती रख को इस गाने के बोलों ने छू लिया। छूते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो देखा देखी दूसरे लोग भी रोने लग गए। देखा देखी मतलब कोई नाटक नहीं था, वो शब्द वो गाना ही कुछ विचित्र है, जैसा कि लता दीदी कहती है आज भी कि हमको समझ में ही नहीं आता इस गाने में क्या जादू है, ये कभी पुराना लगता ही नहीं है।
1: उसके साथ लता जी ने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन आपका नाम उतना प्रसिद्ध उस गाने के साथ नहीं हुआ, और अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर आपके नाम को ख्याति दी गई उस गाने के साथ जोड़कर, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे।
0: देखो लता की महानता है कि उसने उदारता पूर्वक प्रसाद मान करके स्वीकार कर लिया। एक बात याद रखो।

0: कि जो चीज सामने दिखती है लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। जैसे ताजमहल है तो लोग ताजमहल की प्रशंसा करेंगे, वाह क्या स्ट्रक्चर बना है, किसने बनाया है, ये क्या बात है। लेकिन ताजमहल जिन बुनियाद के पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है, उन बुनियाद के पत्थरों को कोई याद नहीं करता है। इसलिए नहीं याद करता कि यही उसकी नियति है, यही उसकी डेस्टिनी है कि वो जमीन में दबा रहे और ताजमहल को अपनी जगह पर बरकरार रखे।
1: दादा, आप अभी नए और पुराने जमाने की बात कर रहे थे और पुराने जमाने के लोगों को बहुत मोहब्बत से प्यार से याद कर रहे थे, तो अब अगर आपको संगीत और गीत की दुनिया में लेकर आए और आपसे पूछें कि जो आजकल गीत संगीत बन रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है?
0: अभी आजकल जो संगीत बनता है उसको हम संगीत तो कह सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो खिचड़ी संगीत है, यानी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ संगीत नहीं है। लोग प्रयोग कर रहे हैं, अगर इसमें कोई दम होगा, अमरता का कोई तत्व होगा, तो ये जी जाएगा इतिहास में और नहीं तो मिट जाएगा।
1: तो क्या आप इस तरह का गीत संगीत रचना पसंद करेंगे जैसा आजकल ट्रेंड में है?
0: नहीं, आजकल का जो ट्रेंड है वो हम पसंद इसलिए नहीं करेंगे कि आजकल कुछ विचित्र वातावरण हो गया है। पहले हम लोग गीत लिखते थे और म्यूजिक डायरेक्टर उसकी ट्यून बनाता था और ट्यून सुनाता था प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर जब अप्रूव करता था तो गाने वाला या गाने वाली उसे गाता था। आजकल उल्टा मामला ये हो गया है कि जैसे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, तो इसी तरह से रेडीमेड ट्यूने हैं, तो रेडीमेड ट्यून दे देते हैं वो कि भाई इसके अंदर बोल बिठाओ, तो वो हमको सूट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर लिटरेचर भरना बड़ा मुश्किल है। टुकड़ेबाजी तो हो जाती है, चार पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा को संतोष नहीं मिलता।
1: इसी आत्मा के संतोष के लिए आपने संन्यास लेना पसंद किया?
0: नहीं, ये बात नहीं है, कुछ तो हमको लोगों ने उम्र की वजह से संन्यासी बना दिया। हमारे पास लोग आते हैं नहीं, और जिस प्रकार का आज ढर्रा चल रहा है, जिस प्रकार का जिस पैटर्न का म्यूजिक बन रहा है, तो वो लोग शायद ये सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो है अभी जनरेशन गैप की वजह से पुराना हो गया है, इसने ये इसमें फिट नहीं करेगा। और हमको इसकी तरह कोई निराशा भी नहीं है क्योंकि हमने इतना काम किया है 55 बरस के अंदर कि हमको कोई खास निराशा नहीं है कि हमको काम मिलता है या नहीं।
1: आजकल आप करते क्या, आपकी दिनचर्या क्या है?
0: हमारी दिनचर्या परिवार में बातचीत करना, रोटी बनती है तो खा लेना अपनी उम्र के हिसाब से, जब इच्छा होती है तो सो लेना, अखबार पढ़ लेना, टीवी देख लेना, रेडियो सुन लेना, और हमको किसी तरह कोई निराशा नहीं है। इसलिए निराशा नहीं है कि जो भी परमात्मा ने हमको दिया हमको उससे संपूर्ण संतोष है, हमको जीवन से कोई शिकायत नहीं है। हम कृतज्ञ हैं परमपिता परमात्मा के कि हमने जो सोचा नहीं था उतनी सफलता हमको मिली उसकी कृपा से।
1: ये तो आपने अपने बारे में बताया, अपनी दिनचर्या के बारे में, कवि प्रदीप की दिनचर्या क्या है?
0: कवि प्रदीप तो वही है ना जो आपके सामने बैठा हुआ है मनुष्य की तरह से, ये कोई अलग अलग चीजें थोड़ी है। कवि प्रदीप तो रिटायर जैसा हो गया है, जैसे कोई पहलवान मान लीजिए दारा सिंह है, एक जमाने में कुश्तियां लड़ा करते थे लेकिन आज वो नहीं लड़ते किसी वजह से, तो इसी तरह से कवि प्रदीप भी दारा सिंह बन गए हैं।
1: लेकिन वो आपकी धारदार लेखनी क्या हुई, उसे कहाँ संभाल दिया आपने?
0: नहीं, हमने अभी क्या है कि अभी लिखना इसलिए बंद कर दिया है कि देश की जो अवस्था है वो अवस्था इस प्रकार की है कि या तो भाई टीका टिप्पणी करो, तो हम खामुखा यानी कंट्रोवर्सी क्यों

0: पैदा करें। अभी अभी एक मेरे मित्र मर गए, वो बहुत सुंदर राइटर थे जिसका नाम आपने सुना होगा, इंदिवर। वो बहुत अच्छे उन्होंने गीत लिखे एक जमाने के अंदर। तो मैं उनसे पूछा करता था कि भाई इंदिवर, तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तो ये कहाँ तुम यानी किस कहाँ से कहाँ उतर गए? तो कहाँ, सच्ची बात ये है, आपने दूरदर्शिता से कुछ चार पैसे इकट्ठे कर लिए, इसलिए आप चुपचाप बैठ सकते हैं।
1: श्रोताओं के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप?
0: श्रोता लोग खूब सुखी रहें, परमात्मा का वरदान उन पर हमेशा रहे, वो सुखी रहें।
1: दादा चलते चलते एक गाना टूट गई है माला, थोड़ा सा सुना दीजिए।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप से अनीता कुमार की बातचीत। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज आप सुनेंगे उर्मिला पांडे को। आरंभ करते हैं इनके गाए इस देवी गीत से।

उर्मिला पांडे की गारी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक ही संगीतकार कार्यक्रम। इसमें आज हमारे संगीतकार हैं अनु मलिक। श्रोताओ, अनु मलिक भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने संगीत से 90 के दशक और 2000 की शुरुआत के दौर को पूरी तरह से जीवंत कर दिया। उनका संगीत सफर जितना शानदार रहा है उतना ही उतार चढ़ाव और विवादों भरा भी रहा है। अनु मलिक का जन्म 2 नवंबर 1960 को मुंबई में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अनवर सरदार मलिक है। वे जाने माने संगीतकार सरदार मलिक के बेटे हैं। संगीत उनके खून में था, इसलिए बहुत कम उम्र से ही उनका रुझान सुर और ताल की तरफ हो गया। उन्होंने अपने पिता से संगीत की बारीकियां सीखी और बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया।

अनु मलिक ने 1980 में फिल्म हंटर वाली 77 से बतौर संगीतकार अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पूनम 1981 की फिल्म और 1984 की फिल्म सोनी महिवाल जैसी फिल्मों में संगीत दिया। हालांकि सोनी महिवाल के गानों को काफी पसंद किया गया और उन्हें फिल्म फेयर के लिए नामांकित भी किया गया, लेकिन उन्हें वो बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिल रही थी जो एक संगीतकार को ए लिस्ट में शामिल करती है। 1980 का पूरा दशक उनके लिए कड़े संघर्ष का समय रहा है।

1993 अनु मलिक के कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल आई फिल्म बाजीगर ने उन्हें रातों रात संगीत स्टार बना दिया। ये काली काली आंखें और बाजीगर वो बाजीगर जैसे गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट एल्बम दिए।

साल 2000 में आई जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी अनु मलिक के करियर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंछी नदिया पवन की

के और ऐसा लगता है जैसे गानों में उन्होंने लोक संगीत और शास्त्रीयता का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। इस दौर में उन्होंने शाहरुख खान की मैं हूं ना के लिए संगीत तैयार किया, जिसके लिए उन्हें एक और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

अनु मलिक को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। वे जितने माहिर थिरकने वाले पैपी गाने बनाने में थे, उतने ही उस्ताद गहरे भावुक और कव्वाली शैली के गीतों को बनाने में थे। उदाहरण, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल। लेकिन अनु मलिक ने कलयुग में जिया धड़क धड़क जैसी सूफी धुनें भी चुनी थी। वे खुद एक बेहतरीन गायक भी हैं। उन्होंने अपनी अनूठी और भारी आवाज में कई हिट गाने गाए हैं, जैसे गोरी गोरी, फिल्म मैं हूं ना, मेरी छम्मक छल्लो, मिस 67, एक गरम चाय की प्याली हो, हर दिल जो प्यार करेगा।

अनु मलिक बॉलीवुड के उन चुनिंदा संगीतकारों में से हैं जिन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक फिल्म उद्योग पर अपना प्रभाव जमाए रखा। उतार चढ़ाव और आलोचनाओं के बावजूद भारतीय पॉप संस्कृति और फिल्म संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके बनाए गाने आज भी शादियों, पार्टियों और रेडियो पर उतने ही चाव से सुने जाते हैं, जो ये साबित करता है कि वास्तव में वे धुनों के राजा हैं।

0: समाप्त होता है। इसमें आज आपने अनु मलिक के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत सुने। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंडओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थियेटर, क्लास रूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किन बितवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डोढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रूपये का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आरंभ करते हैं कबला सिस्ता के गाए भजन से, जिसे लिखा है अनजान ने।

सबरंग कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए एक फिल्मी गीत। फिल्म है प्रेरणा, गीतकार है मोती सागर, संगीतकार विजय कुमार और आवाज है प्रीति सागर की।

प्रीति सागर के गाए इस गीत के साथ ही मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

प्रस्तुत है आपके ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। और आज की आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ उपस्थित है आपका मित्र समीर गोस्वामी। कार्यक्रम का पहला गीत है कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और पसंद किया है आप सभी ने। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी, अड़ार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ग्राम बिडोरा तहसील से बड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश मां बमलेश्वरी धाम सांकरा, सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दो दिलों की दास्तान से। गीत अनजान का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की, पसंद आप सभी की। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, धनोरा विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा। महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मनीष पाटिल, सचिन पाटिल। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और अंकिता सिंह। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है दो दिलों की दास्तान।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है आप तो ऐसे न थे, गीत निदा फासली का, संगीत उषा खन्ना का, पसंद आप सभी की। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। ग्राम खकल विकास खंड नंदी गांव तहसील कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनका समस्त परिवार। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म मनोरंजन से आशा भोसले की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का, पसंद आप सभी की। गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। जसपुर जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश सिंघई और उनका पूरा परिवार। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है यादों की बारात। गीत लिखा है मजरू ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने और पसंद है आप सभी की। ग्राम पीपर लोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मोहल्ला हलवाई आन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस महाकर,

निर्मला नौहाकर विशाल नौहाकर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदर जसवीर जस्सी सीता और गीता। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा शाबिस्ता मोहम्मद नसीर पलक लुबना और यश मंसूरी। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लगू और आरती अरोरा। आइए आप सभी की पसंद पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और रतोस बनाई थी आनंद मिलंद ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, SH बिहारी की बोल थी और तस बनाई थी ओपी नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल सुरों में ये दिल लगी फिल्म का नगमा।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक के लिखे हुए नगमे को, जिसे तर्ज से सजाया है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में आनंद असद भोपाली के लिखे बोलों को, जिसकी तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। गीतकार थे परवीन और संगीतकार थे टप्पू मलिक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तुम पे मरते हैं फिल्म का नगमा, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल थे और तर्ज बनाई थी उत्तम सिंह ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल शुरू में मिस्टर बेचारा फिल्म से ये नगमा, जिसे लिखा है नवाब आरजू ने और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

आइए आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का नगमा, जिसे आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलंद।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 10 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश पार्को को हिन्दू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। अभियान में 5,72,000 पशुपालकों को भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया। बड़वा से प्रवीण, शिमाली, मीना, आदित्य, आदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मर्डर फिल्म का ये नगमा, जिसे आमिर जमाल ने आवाज दी है। सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

लिखने वाले हैं नेपाल वैली सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। समाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का नगमा, आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, राज मधुराशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सदस्य, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी की बोल हैं तस बनाई रोशन ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदा, अस्मा, सालिया, शुएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम, गुड़िया और शुएब। आप सभी ने सुनना चाहा है क्रिश फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं क्रिश फिल्म से ये नगमा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक हंसना मना है का पांचवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहाँ तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठकी, भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नाग पंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली। मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है अब वो क्या करें, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है, वहां कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस। यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटे, एक दूसरे के साथ स्नेह बांटे, ये इसका सच्चा मैसेज था। और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम से कम दो चार दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। चार छह लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है। संजू कैसा क्या तुम्हारा कलर? अरे यार गुरु, यार जींस ले ली है, अब टी शर्ट की यार जगह नहीं हो रही, तुम दिलवा दो। तुम्हें काम करो, 20 पड़े हैं, हाँ पड़े, तुम्हें काम करो, वहां चलो, वहां गोल बाजार के वहां सब सेकंड हैंड मिलते हैं। अरे कोई पहचान जा, अरे पचने वाला दे रहे हो, चलेंगे। यार तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार जब क्या हुआ, पिछले बार कुर्ता पहन के गए थे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी? यार लेदर वाली जैकेट मिल जाए। अरे तुम भी बड़े भाई ना, उधारी के चक्कर में हर समय रहते, तुम आओ एक काम करो, शाम को आओ, हम दिलवाते हैं, वो चच्चा की है, हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम। तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार मतलब कुर्ता मिल गया, हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जींस भी सब मिल गई। अब यार बड़े भाई यार जूते की बहुत दिक्कत, क्या? अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं, काट रहे हैं यार। तो बोले फिर क्या व्यवस्था? पैसे की व्यवस्था करिए यार, 250-300 रुपए। हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते। अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज सदर जाना, गोरखपुर जाना, यही मिल जाएगा। तुम बोलो ना कितने चाहिए तुम्हें? और विश्वास नहीं है तो तुम मतलब चौदह को चलना, मुफ्त दिलवाएंगे अपन। और सुबह से माहौल बन रहा है, और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार-बार की वहां भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग वेविंग बन रही है बढ़िया। अरे तो खूंट निकाल दी, अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे, सीधी भी नहीं गुरु, करीब का मामला है ना, तो जरा गड़ना नहीं चाहिए। अरे वाह सही। अब साहब पूरी तैयारियां हो गई, और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहां दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है।
2: तुम्हारा कैसा क्या? नहीं हमने तो ना नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज, शॉर्ट ये शॉर्ट, वो तू तो बिल्कुल आजकल इतनी शॉर्टकट होती जा रही है, ऐसा नहीं करना कि अल्लाह सब हो गया बाद में हम लोग को पता चल रहा है। नहीं रे तेरे को तो ना कितनी पक्की सहेली थी, हाँ माले पक्की सहेली, पिछली बार बुलाया था, बाद में कजन बोल, नहीं कजन ही हमको चार आ रही। एक बात बता, जिसको तुम कजन कह रही थी परसों तक तो मेरे कजन थे, तो आए कैसे हो गए?
1: अब साहब ये सब चर्चाएं, वहां पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है, और आदेश दिए जा रहे हैं।
3: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप, हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है।

0: कि जितने भी जगह हैं खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफी हाउस, और जहां जहां मीटिंग पॉइंट है पूरे में सब में रहेंगे। और सुनो, तुम इधर आओ, रेखा, सुशीला, श्यामा, तुम इधर आओ, कर लो तुम भी जाओ। एक चीज ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो। क्यों सर, यू विदाउट यूनिफॉर्म? समझो बात, जितनी कह रहा है, मिशन है हमारा, विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी, और अगर कोई फूल दे तो ले लेना। नहीं सर, हम किसी से भी, अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम वैसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले लेना, और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू। समझ गए? नहीं समझ गए? ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी तैयारियां हो रही साहब। अब सुबह जब हुई, वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं, और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है, कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। और देखिए सुबह का वक्त, और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े। और कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास, बच्चों में, सब में बड़ा जोश है त्योहार को मनाने का। जो त्योहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है। क्यों नहीं मनाने देना चाहते? उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए दूसरी पार्टी से। क्यों? बोले पिछले बार तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा, इस बार? अरे नहीं यार, पिछले बार हम फूल लेके गए तो यार मना कर दिया हमने। बोला ठीक है, स्वच्छ विरोधी में शामिल हो जाओ। बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है। बोले तुम क्यों, उसको मारे क्यों रहे पिछली बार? अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा, कोई बोलता नहीं हो, चक्कर में मारना ही चक्का दो। ये साहब चर्चाएं हुई। अब जो फूल देते हैं और लेते हैं, जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात? अब मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दे ऐसा ना हो कि रिवर्स में झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है, और लड़कियों को भी डर रहता है, इन्होंने भैया देख लिया, वो बाजू वाला देख लिया, शिकायत कर देगा। अब जैसे ही उसने फूल दिया, एक्सक्यूज मी फूल, मुझे आपसे बात नहीं करनी, हम आपको बहुत मतलब चाहते हैं, आप चाहो या ना चाहो, आप जा नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू नहीं नाटक नहीं करो, आप प्लीज दे दीजिए माम। अच्छा रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है। एक चौबारे पे मैं गया, काफी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है, और क्या चर्चा हो रही है। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है, और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा है, तुम आओ बेटा, तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार। तो तुम एक काम करो ना, तुम वहां चले जाओ, फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। रवि जा कह रहे यार, गुड्डू भी कह रहा, क्या होगा ये गुड्डू से पूछो। क्या तुम रो कह रहे यार? क्या होगा क्या
1: भैया, हम फूल ले रहे यार, 20 रुपया के 3 कली की बात है यार, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आ रहा है। कमर हट गई गुरु, बहुत बड़ा मारा, माँ कसम बहुत मारा।
0: और जा फूल लेने। ये घटनाएं हमने इसे पूछा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारे इधर लगे रहे फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ? अरे विजय रात ही में कोई चुरा के ले गया, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में भाषा भी चला गया विजय। तुम्हारे तुम इधर आ, तुम्हारा क्या नाम?
2: हमारा नाम झोरी लाल।
0: अरे बहुत सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे कौन से फूल लगे?
2: हमारे तो गेंदा के लग।
0: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार। तुम्हारा क्या नाम है
2: जी? खजूरी।
0: क्या नाम? खजूरी। अरे बहुत सुंदर खजूरी, तुम्हारे इधर बेटा कौन से फूल लगे?
2: हमारे इधर तो रात रानी के लगे।
0: अच्छा। रात रानी के फूल नहीं दिए जाते यार।
2: नहीं तो हम तो देंगे।
0: रात रानी के फूल नहीं दिए जाते, कब दोगे तुम?
2: दिन में नहीं देंगे, बहुत डर लगता है, रात रानी के फूल रात में कल्ची में देंगे।
0: और बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे इधर? अरे बहुत सुंदर, आओ आओ भैया श्यामदास जी, आओ आओ। अब श्यामू आ गए, रंग पक्का, कलर छूटे, पैसा वापस। उनसे पूछा के क्यों तुम दे रहे फूल कि नहीं?
3: हम नहीं देंगे यार।
0: क्यों?
3: अरे सोचना, देगी ना
0: दे दो ना, क्या डरने क्या बात है? अच्छा ये बताओ दे किसको रहे हो?
3: तो उसी को देंगे, अब दोनों का कलर भैया एक ही सा है ना, मैचेंगे।

0: अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो?
1: ये ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही, एक से बुलाया तुम इधर आओ, तुम कहे के फूल देते? अरे भैया हम नहीं दे रहे फूल, फूल के पीछे बहुत देखा। तुम क्यों नहीं? अरे 11 फूल देने यार, हम लाइन में लगे भैया, 4 से जाने के फूल ले लिए, वापस आ गए। क्या तुम्हारे के लिए नंबर ही नहीं आया भैया? तो फिर हम भी लेके आ फूल, अब दूसरा वाला दें। कौन सा दोगे? बेशरम का। ये अलग अलग फूलों की चर्चा चल रही। एक को पूछा क्या भाई तुम काहे के फूल दे रहे? कहने लगे गुरु हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन। क्या झक कपड़े पहनती गुरु, मार एकदम। अब कौन कौन सी कंपनी के पाउडर वाउडर से धोके बहुत झमाझम कपड़े, सफेद कपड़े, सफेद जूती और सफेद, बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन, मतलब बिल्कुल सफेदी की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल

0: हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन। क्या झक कपड़े पहनती गुरु मार एकदम। अब वो कौन कौन सी कंपनी के पाउडर वाउडर से धो के बहुत झमाझम कपड़े, सफेद कपड़े, सफेद जूती और सफेद बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन एवेन, मतलब बिल्कुल सफेद ही की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल चांदनी बदन गुरु, हम तो चांदनी बदन को चांदनी रात में आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में चांदनी के फूल देंगे। बात अच्छी। अब ये फूलों की चर्चा चल रही है, हमने पूछा काय बड्डा तुम कैसे फूल दे रहे? हम कभी नहीं देंगे बाबा फूल। क्यों? अरे गुरु यार हमने बोला फूल दे तो उसने कहा तुम अप्रैल में आना। एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा तुम आओ तुम्हारा नाम?
1: जी झोरी।
0: अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार, झोरी दरा बेटा तुम कहाँ रहते?
1: जी ग्वारी घाट में।
0: ग्वारी घाट में रहते, बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए ग्वारी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरिल है और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे। नहीं भैया वहाँ के सब फूल मतलब पहले ही कट गए, बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए। अच्छा एक्सपोर्ट हो गए? हाँ भैया इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का, तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना भैया? तो कौन से फूल? खारी वाले। इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया, पार्क में देखा कि दो तीन लोग यहाँ वहां बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा क्यों क्या हुआ तुमको यार? अरे बोले यार भैया यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हमारा मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी, तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं उसके पिताजी क्या देंगे, दहेज में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक काम करो तुम, तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहां से मतलब दिल टूट गया यार, क्या बताएं। तो फिर बोले फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया बहारो फूल बरसाओ। लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात, बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे और पापा ने जैसे ही बिटिया को आते देखा और क्या बात की।
2: कितना बज रहे हैं?
3: पापा 5:30।
2: अच्छा कॉलेज कितने बजे छूटता?
3: पापा जी 3:30 बजे छूटता।
2: तो इतने देर क्या कर रही थी?
3: नहीं वो सहेली के यहाँ चली गई थी तो इसलिए लेट हो गई।
2: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और यहाँ तो पीछे क्या है?
3: नहीं पापा कुछ नहीं।
2: हाथ दिखाओ।
3: नहीं वो कुछ नहीं।
2: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, अब हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है।
0: अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहाँ से तुम आ रही हो।
3: पापा मम्मी हमको बोलते।
0: अच्छा हमको नहीं बोले, किसको बोले?
3: मम्मी को।
0: क्यों मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा
3: मम्मी नहीं।
0: क्यों कहाँ गई मम्मी?
3: मम्मी वहाँ गई है प्रवचन सुन।
0: क्यों आज किसका प्रवचन हो रहा है? कौन संत आ गए?
3: वो संत वैलेंटाइन आए।
0: और जैसी मम्मी आई, आइए कहाँ गई थी?
3: नहीं वो गुरुजी आए थे तो उनका प्रवचन सुन।
0: और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हूँ तुम गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
3: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए, नहीं तो मतलब आखिरी बचे वाले हम,
2: तो हमको ना बता दो बिल्कुल।
0: ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी पूजा की और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त। हाँ मैडम, बोले आपने 200 रुपए की माला ली, एक कली की बात करने, ये लीजिए। बढ़िया पैक करके उनने खुशबू खुशबू डाल के और वो थर्मोकोल के बबल और बढ़िया से उसको जरा सजा के वो उसने दिया। और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया।

0: और बाबा के दरबार गई। बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े, आंख बंद, बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा। एक बिटिया फूल लेने के लिए अपने पड़ोस में गई और जैसे ही उसने बगीचे से फूल तोड़ना चाहे, दादी ने फौरन उसको वहीं पर आदेश करके रुका, हाँ हाँ बेटा आज बिल्कुल फूल नहीं। क्यों दादी? मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल, और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तुम हमें ना बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची में मैं भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़े और किसी को मना नहीं। हाँ मैंने बताओ बेटा, तुम जो उनके लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जो उन भगवान के लाने फूल ले जाती हो, वे तुम्हारे वाले भगवान आज हमारी नातिन से एंगेज हो रहे।
1: हंसना मना है। कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है। ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
2: ले केले वाले।
1: हाँ भाऊजी नमस्कार। भाऊजी बोलिए। भाऊजी
2: केले कैसे दिए?
1: ये वाले केले भुसावल के भाऊजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं भाऊजी।
2: ले लीजिए।
1: अरे भाव क्या लगाए भाऊजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
2: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
1: अरे अब आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
2: 5 के 12?
1: हाँ।
2: अरे यार कुछ कम करो यार।
1: तो 10 ले लो। लला सेठ जी नमस्कार।
2: नमस्कार। आइए साहब आइए।
1: और क्या हाल दोस्त?
2: और बढ़िया।
1: लला एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
2: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकालना भैया।
3: सेठ जी नहाने का साबुन खत्म हो गया। सेठ जी
2: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पैजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
2: अच्छा अच्छा। हाँ। पैजामे का नाला?
1: हाँ,
2: हाँ जी पैजामे का नाला। छोटू पैजामे का नाला देना भैया।
3: सर जी नाला तो पजामे का खत्म हो गया। सर जी रात में माल आएगा तभी आ पाएगा।
2: क्या कहा? पजामे का नाला भी खत्म हो गया है? भाई साहब क्या है, वो नाला भी खत्म हो गया है पजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है, और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाला और साबुन ये दोनों सामान पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
1: माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
2: जूते की पॉलिश?
1: हाँ
2: काली वाली।
1: हाँ, हाँ,
2: वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली।
1: हाँ,
2: ये आपने काली मांगी?
1: हाँ,
2: जी जी ये लाल है, क्या है कि काली जरा खत्म हो गई है। हाँ, वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसे ही माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुँचा देंगे।
1: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
2: ताले?
1: हाँ ताले। हाँ, ताले।
2: ये देखिए ताले तो सामने ही रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
1: हमें ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम, मगर अंदाजा है कि 200-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ

0: आपको हंसाने के लिए।
1: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए।
2: क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब जल्दी चलिए।
2: अरे भाई बात क्या है, कहां चलूं मैं?
1: डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है।
2: अरे भाई किसकी तबीयत खराब है? जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊं।
1: डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती।
2: अरे भाई कौन नहीं आ सकती, आपकी माताजी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं।
1: नहीं डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता।
2: अरे भाई वो है कौन?
1: वो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है।
2: भैंस बीमार है?
1: शट अप, गो डाउन।
2: भैंस बीमार है और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूं?
1: मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट।
3: अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब।
1: ठीक है डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 रुपया लगेगा।
3: हाँ डॉक्टर साहब हम 50 रुपये देंगे।
1: साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियां देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं।
3: डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे?
1: अरे भाई एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं है, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई। तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं?
2: हाँ साहब हमने फूकनी तो बहुत देखी।
1: बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है?
3: बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई।
1: बोले क्या हो गया?
3: बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंस के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूक मार दी।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
4: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है, तुरंत तो 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उन्होंने, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए विंडो जो होती है खिड़की होती है उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे, जैसे उनने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर उन्हें दिया और फिर फेंका, फिर नहीं गया, 3-4 बार ऐसा हो गया। तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज उठाया, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है, और जैसे उन्होंने लिया एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। ये ऐसा है हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीजों के रेट पूछे और रेट कैसे पूछे, क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट से वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे जरा। हाँ साहब कौन सा तोता दिखने चाहेंगे सर आप? वो वाला दिखा, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो ऑर्डिनरी सा, वो जिसकी कंठींटी है और बहुत बढ़िया सा है, कैसा तोता वो दिखा जरा, कैसा लग रहा है वो? साहब ये जो तोता है इस तोते को करण तोता बोलते हैं साहब, ये राम राम सीताराम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट को ये जो है तोता है, आप चाहे तो ये ले लीजिए।
5: कितने का है?
4: साहब ये जो तोता है ये मात्र 200 रुपए का है।
5: अच्छा,
4: उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में उसको दिखाओ। हाँ साहब ये जो तोता

0: है, ये तोता कुछ काम करता है, इधर के उधर के इधर करता है। साहब, ये तोता, इसकी पगार बहुत कम होती है, लेकिन ये उससे ज्यादा कमाता है। तोता बहुत काम का है, बड़े बड़े काम कर देता है सर, जो काम आप चक्कर लगवा लगवा के नहीं करवा पाएंगे, ये तोते कर देते हैं। साहब, ये तोता जो है 2,000 रुपए का है, कम बोलता है। यस सर, नो सर बोलता है। अच्छा, ये जो सोने के पिंजड़े में, सोने के झूले में सुनहरा सा वैल गजब झम तोता दिख रहा है, जो जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा देखा। साहब, जिस तोते की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली तोता है। ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़े जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आया साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है। और साहब, ये जो तोता है, केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा, ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबात भी हो यार, जो तोता सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे के पिंजड़े में रखा है, उसको तुम खिला रहे वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है, उसको तो हम देख रहे हैं।
1: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 5वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान में 5,72,000 पशुपालकों से भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है, अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

प्रिय श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य दर्पण में मैं प्रेक्षा सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर और स्वस्थ जीवन शैली की, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं की देखभाल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच का सुंदर समन्वय है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनती हैं। पर याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत स्वयं की देखभाल से होती है। इसके लिए कुछ अच्छा समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बना पाएंगे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: कार्यक्रम में समय हो गया है भेंट वार्ता का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे वायरस हैं जो पनप जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेंद्र दवे को, और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, बारिश के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हम कोई घातक बीमारी भी कैच कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, तो कैसे हम इस मौसम में खुद को बचा सकते हैं?
2: देखिए, बारिश में हवा में वातावरण में नमी बहुत रहती है
1: जी।
2: और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है, तो नमी और टेम्परेचर, ये दोनों चीजों का जो मिक्सचर है, ये वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाता है
1: जी।
2: और इसलिए होता है इस वातावरण के कारण से सांस संबंधी बीमारियां समझो, या हम पेट संबंधी रोग समझो, या आंखों से संबंधी, गले के संबंधी, ये सब वायरस की जो बीमारियां हैं, और इसके अलावा कई सारी सीरियस इलनेसेस हैं वायरस रिलेटेड, वो सभी इस समय बहुतायत से हमारे ओपीडी में हम लोग देखते हैं। तो वायरस की जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम आंखों की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज है, देन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, नाक संबंधी, गले संबंधी तकलीफें होती लोगों को, और सांस संबंधी तकलीफों के अंदर वायरल ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। निमोनिया सबसे जो घातक होता है, वो जिसकी मॉर्टेलिटी रेट भी काफी होती है, अगर हम उस पर समय रहते ध्यान नहीं दें तो कॉम्प्लिकेट होता है। और पेट संबंधी उल्टी दस्त की जो बीमारियां हैं वो कॉमनली इस मौसम में हम लोगों को देखने को मिलती है
1: जी। सर, खासकर जब रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, सर्दी

0: जुकाम, बुखार, खांसी, घर में अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, ये एक संक्रमित बीमारी होती है, वायरल डिजीजेस, हम उनका ध्यान रखते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं?
1: देखिए, वायरस अगर सांस संबंधी बीमारियों की बात करें तो छींकने पर, खांसने पर, बोलने पर करीब करीब 1 मीटर की डिस्टेंस में एकदम से फैलते हैं। ये वायरस की प्रकृति होती है, तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए बीमार व्यक्ति से। इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कोविड प्रोटोकॉल में भी यही बातें की थी, क्योंकि कोविड भी एक वायरस था
0: जी।
1: इसी तरह से जो मौसमी वायरस होते हैं उनसे बचाव के लिए भी हम बोलते हैं, यदि घर में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार आ रहा है तो उससे एक नियत दूरी बना के रखें और मरीज के मुंह पे कपड़ा या मास्क जो है रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में उसको सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके भी जो है मुंह पे सांस में अवरोध मास्क के रूप में एक रहे तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, जो वायरस के जनित मरीजों के रोगी हैं उनकी सेवा करने वाले यदि संभव हो तो या तो ग्लव्स पहने या हाथों को बार बार धोएं साबुन पानी से, क्योंकि हाथ एक और माध्यम है जिसके माध्यम से वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये दूसरी तरीका है जिसमें हम ये कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खान पान से रिलेटेड, कि इस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वायरस की बीमारी जो है माइल्ड होती है, नहीं तो वायरस की बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सब लोग जो है उनको विशेषतर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वायरस की बीमारी से, इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: जी, सबसे ज्यादा जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखा है, जैसे कि आपने बोला निमोनिया, निमोनिया एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग डरते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: देखिए, निमोनिया किसी भी मरीज को सांस नली में संक्रमण होता है और वो फेफड़े की तरफ बढ़ता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है
0: जी।
1: तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ तो निमोनिया की संभावना पूरी है। और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पे निमोनिया का इलाज करने में कई बार कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं
0: जी। सर, इसके अलावा इस मौसम में एलर्जीज भी हमने देखा है कई गुना बढ़ जाती है, लगातार छींके आना, नाक बहना, जरा सी धूल से या पोलन से, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं?
1: देखिए, इस समय हरियाली ज्यादा होती है, जंगली घास फूस उग जाती है, वो भी एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है। हरियाली में पोलन्स, जो आपने जैसा बोला, पोलन्स भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है जो एलर्जी का कारण है। मुख्यतः तो शहरों में और गांवों में इस मौसम में एलर्जी मिलती फंगस की, क्योंकि दीवारों में सीपेज होता है और फिर जब दीवारें सूखती है तो दीवारों पर काले हरे धब्बे आ जाते हैं, वो धब्बे एक्चुअल में फंगस है और फंगस ड्राई होने के साथ हवा में उड़ती है तो लोगों को एलर्जी बहुत करती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस समय नमी ज्यादा होती है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, तो जो गद्दे होते हैं, सोफा होता है, मोटे गद्दे, तकिया, कालीन, ये सब जो हमारे घर के अंदर चीजें होती है, इनमें डस्ट माइट पनपती है। डस्ट माइट, डस्ट के साथ होने वाले बहुत माइक्रोस्कोपिक बारीक कीड़े होते हैं जो नजर नहीं आते आंखों से, लेकिन उनकी एलर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो डस्ट माइट की एलर्जी और पोलन की, फंगस की एलर्जी, इन तीनों की संख्या बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिनसे हमें दूर रहना है, बचाव करने की जरूरत है
0: जी। इसके अलावा सर, शहरों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्या उसका आपने आपकी ओपीडी में कोई प्रभाव देखा है?
1: प्रदूषण, देखिए, राउंड द क्लॉक समस्या है। बारिश के टाइम में इस मौसम में प्रदूषण का एक समस्या बड़ी है कि जो पानी गिरता है तो उसके साथ में हवा जो होती है ठंडक, उसमें घनत्व ज्यादा हो जाता है हवा का, तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है हवा के अंदर, जो कण होते हैं वो बहुत नीचे तैरते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हेल्थ पर पड़ता है और कई सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं प्रदूषण के साथ भी इस मौसम में होती है। तो कॉमनली समस्याएं वही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वायरस की समस्याएं, एलर्जी की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, सभी में आंखों में खुजली हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, नाक और गले की समस्याएं हो सकती है, फेफड़े की समस्याएं हो सकती है। प्रदूषण की अन्य समस्याओं में हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब चीजें भी देखते हैं, लेकिन वो लगातार लंबे समय रहने पर होती हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जो इस मौसम के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है
0: जी। फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित कोई और बीमारी जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: देखिए, जो आपने जैसे एलर्जी का बोला, तो एलर्जी में लगभग 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है। तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी। और बहुत लोग बादलों में, आपने देखा होगा, सांस के मरीजों को तकलीफ होती है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें, और इन्हेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इन्हेलर्स को प्रॉपर लेते रहें।

0: ताकि सांस नलियां खुले अच्छे से और कफ बलगम यदि बन रहा है तो बाहर निकले, नहीं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, अस्थमा का अटैक आता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, मरीजों को तकलीफ होती है, तो इन सब समस्याओं की वजह से फिर मरीज परेशान होते हैं। तो अस्थमा की एक बीमारी है और बाकी मौसमी समस्याओं में एक हेपेटाइटिस, इस समय बारिश के टाइम में पीलिया जो होता है वो वायरस जो है पानी से फैलता है, तो पीने के पानी में गंदगी रहे तो वायरल बीमारियों की बात करें तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है। इसके साथ में दूसरी जो बीमारियां बैक्टीरियल बीमारियां जैसे हैजा है या टाइफाइड का भी इस समय बहुत प्रभाव रहता है। तो ये मौसम संबंधी सारी समस्याएं इस समय होती है, और मच्छरजन्य समस्याएं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया ये भी बहुत होती हैं। तो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो इस समय मरीज की संख्या बढ़ जाती है और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फीवर के साथ यदि व्यक्ति आया है तो क्या बीमारी हो सकती है उसका पता लगाने में थोड़ी मुश्किलें आती है, पर जांच करके सब चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए टाइमली अपना इलाज कराएं, जांच कराएं और सही डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना इलाज कराएंगे तो हमें निश्चित रूप से बीमार से स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा वो, और हमको ये चीज में प्रायोरिटी देनी चाहिए बारिश के टाइम में, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं यदि टाइम रहते इलाज ना किया जाए तो।
1: जी सर, जैसा आपने बोला टाइम रहते इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोगों में ये मानसिकता देखी गई है कि सर्दी है, जुकाम है, श्वास से संबंधित जब भी कोई बीमारियां होती हैं लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने में काफी देरी कर देते हैं
0: जी।
1: कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें पता चल सके कि नहीं, अब इस व्यक्ति का इलाज घर पे संभव नहीं है, हमें विशेषज्ञ की मदद लगेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा।
0: देखिए, मामूली सर्दी जुकाम एक या दो दिन से हो रहा है तो फिर हम होम रेमेडीज से हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ रहा है या गले में दर्द पकड़ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज को जरूर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत मामूली सिम्टम्स के लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सिंपल पैरासिटामोल लेके और प्लेंटी ऑफ लिक्विड देके पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स बहुत कम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ वो फिर कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम जहां फीवर आने लगता है, गले में तकलीफ होने लगती है या सांस में तकलीफ होने लगती है, तुरंत जाके मरीज को एंटीवायरल और सपोर्टिव मेडिसिन लिखवानी चाहिए, जरूरत हो तो भर्ती भी करना चाहिए। सीरियस मरीज जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिनको भर्ती करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर वो स्टेज ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सीरियस मरीज निमोनिया के जो होते हैं उनमें 30-40% मॉर्टेलिटी रहती है, मतलब डेथ की संभावना रहती है। तो सीरियसनेस को नहीं पनपने दें, ये मेरा सभी से आग्रह रहता है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू सर। आपकी तरफ से कोई और संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: देखिए, बारिश का मौसम एक वरदान मौसम है मानव सभ्यता के लिए, प्राणियों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत आवश्यक है हमारे लिए
1: जी।
0: लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाएं, साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, अपना खान पान संतुलित रखें, बाहरी गरिष्ठ चीजें ज्यादा नहीं खाएं, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाएं जिसके, और यदि फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो अच्छे से धुलाई करके खाएं, और जो बाहर चाट पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीजें मिलती है उसमें अपना ध्यान रखना है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि इस मौसम में इन चीजों से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, आंखों पर चश्मा लगाना, मास्क बांधना रोड पर, क्योंकि जो डस्ट उड़ती है कीचड़ वाली वो भी बीमारी का एक कारण बनती है प्रदूषण के साथ में, और वायरस के जो अन्य बीमारियां जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना ज्यादा, यदि संपर्क में जाना पड़े तो मास्क लगाना जरूरी है, और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहना ताकि हाथ हमारे बीमारी का सोर्स ना बन पाए। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना है हमको। बच्चों को, बूढ़ों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको तेजी से बीमारी होती है कोई भी, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट अपनी बीमारी कंट्रोल रखें और साथ में इन सब चीजों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है हमेशा।
1: धन्यवाद सर, हमें आपका कीमती समय देने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
2: अभी आपने सुनी मौसमी बीमारियों से बचाव विषय पर डॉक्टर लोकेंद्र दवे से महक गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग की। आज स्वास्थ्य के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन्हीं में से एक है कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग। ये एक छोटी सेंसर आधारित तकनीक है जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है और रात दिन ब्लड शुगर का स्तर मापती रहती है। इससे कई बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत कम होती है और शुगर के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों का पता लग जाता है। यह जानकारी मोबाइल या रीडर पर आसानी से देखी जा सकती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है समय पर सही कदम उठाना, दवा, भोजन और व्यायाम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा डायबिटीज को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो इस तरह की ये तकनीक डायबिटीज के मरीजों के इलाज में बेहद कारगर है। श्रोताओं, अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आपसे कुछ सेहत सूत्र साझा कर रहे हैं। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, पेट की समस्याएं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खुला और बासी खाना खाने से बचें, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें। पीने के लिए साफ, फिल्टर या उबले पानी का प्रयोग करें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके। बारिश में भीगने पर तुरंत गीले कपड़े बदलें और शरीर को सुखाएं, क्योंकि गीले रहने से त्वचा संबंधित रोग और सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से रोकें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। इस तरह आप मौसम का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं छगन लाल वर्मा और साथी। इनके स्वरों में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगनलाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम साबरी को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

चली जाए मार न दे डंक, नजर कोई हाँ।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा। और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्यप्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉ यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक

और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे और यह भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस

0: सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंद्र

0: चंद्रशेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई।

जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विम्बल्टन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विम्बल्डन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बारिश का मौसम आ चुका है, धरती की प्यास बुझ गई है, हर मन का इंतजार खत्म हुआ है और मन खुशियों के गीत गुनगुना रहा है। जिंदगी की तपिश मिट गई है, तो आइए ऐसे सुहाने से मौसम में आपके मन की बात कर लें। जी हाँ, आपके मन की बात यानी आपके मन के गीत, जिन्हें आपने लिख भेजा है खतों में। और ये पहला खत मेरे हाथ में है, धमतरी से आया हुआ, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी आई है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश्वर यशराज। और ये खत आया हुआ है पेंड्रा छत्तीसगढ़ से।

लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं, संगीत इस्माइल दरबार का और गीतकार नुसरत बद्र। बेगाना वार ऐसे वो गुजरे करीब से, जैसे कि उनको मुझसे कोई वास्ता ही नहीं।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियान, शोरगुड़िया, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेन्द्र कुमार वर्मा, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और ये चिट्ठी आई हुई है मुंगेली छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके परिवार के सभी सदस्य। और मोटका माफी जिला खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत। आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की हैं। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार एआर रहमान। आज कैसी हवा चली कि फिराक आंखें बेख्तियार भर आईं,

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी। और बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ। और लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन प्रीतम की। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का, मर गया हूं और मरने का गोमा नहीं होता।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सेना।
1: और अब हम आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं।

इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और मोनिका नूपुर ऋषिका रॉबिन ने। और अगली चिट्ठी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शुभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। सूरत गुजरी निगाहों से कितने मेरी, कौन दिल में बसा है तुम्हारी तरह।

0: मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित ब्रह्मानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाते विवरण अपडेट करने की समय सीमा को 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में होगा। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, जो मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। आज शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 बजे और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। आपको हम एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल और 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुने कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी और मेरे साथ हैं
1: अभिषेक मिश्रा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, आप सभी के मनोरंजन के लिए गीत संगीत और आप सभी की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा से जिसका नाम है विश्व जूनोस दिवस।
1: साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर के कार्यों की स्मृति में मनाया जाता है।
0: 6 जुलाई सन 1885 को पाश्चर ने सफलतापूर्वक रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया जो एक जूनोटिक रोग है।
1: साथियों, जूनोटिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलते हैं।
0: और हाँ, ये ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जैसे रेबीज, कोविड-19, डेंगू, वर्ल्ड फ्लू आदि।
1: तो साथियों, अब आपका सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए? क्या इनसे बचने के लिए जानवरों से ही दूर रहना चाहिए?
0: नहीं, जानवरों से दूर रहने की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हाथ धोना, जानवरों को छूने या उनको खाना खिलाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना।
1: इसके साथ ही अपने पालतू पशु जैसे कुत्ता या बिल्ली को समय पर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।
0: और हाँ, दूध को हमेशा उबाल कर पीना, नॉन वेज को अच्छे से पका कर खाना,
1: और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया ना फैले।
0: तो साथियों, इन बातों का ध्यान रखकर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल साथियों, इसी को हम वन हेल्थ अप्रोच भी कहते हैं, यानी अगर जानवर और हमारा पर्यावरण साफ और स्वस्थ रहेंगे तो हम इंसान भी बीमारी नहीं पड़ेंगे।
0: तो हम अभी हम बात कर रहे थे विश्व जूनोसिस दिवस की, आइए सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज दी थी लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।
1: गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है ग्रीन इंडिया मिशन।
0: दोस्तों, आज सुबह जब हम आकाशवाणी आ रहे थे तो रास्ते में हमने लाल बत्ती पर एक गाड़ी रुकी हुई देखी। उस गाड़ी के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी थी कि प्रकृति के पास हर समस्या का हल है, बस इंसान ही थोड़ा बेअकल है।
1: हाँ, बात तो मजाक की थी लेकिन दिल को छू गई। आज कंक्रीट के इस दौर में हम सब एसी कमरों में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती गर्मी पर चिंता तो जताते हैं, लेकिन समाधान क्या है?
0: इसका समाधान है ग्रीन इंडिया मिशन, यानी राष्ट्रीय हरित भारत मिशन।
1: दोस्तों, इस मिशन का लक्ष्य है हमारे देश की करीब 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन को फिर से हरा भरा बनाना।
0: हाँ साथियों, और सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगेंगे तो हमारी हवा कितनी साफ होगी। मानसून समय पर आएगा और जो ये बिन मौसम की बरसात या बेहिसाब गर्मी हमें परेशान करती है ना, उस पर भी लगाम लगेगी।
1: और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? सरकार इस काम को अकेले नहीं कर रही, इसमें गांव की ग्राम सभाओं और हमारे उन 30 लाख आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को साथ

0: जा रहा है, जिनकी रोजी रोटी जंगलों से चलती है, यानी पर्यावरण की रक्षा भी और लोगों को रोजगार भी।
1: लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ गांव या जंगलों की नहीं है। शहरों में रहने वाले हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया पर गो ग्रीन का स्टेटस लगाने तक है?
0: बिल्कुल नहीं। ग्रीन इंडिया मिशन तब पूरा नहीं होगा जब तक कि हम और आप अपनी बालकनी, अपनी छत या अपने मोहल्ले के खाली पार्क में एक एक पौधा नहीं लगाते।
1: दोस्तों, इस वीकेंड पर मॉल जाने के बजाय अपने बच्चों के साथ मिलकर एक पेड़ लगाएं, उसे बड़ा होते देखें, क्योंकि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं होगा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी तरफ से शुद्ध हवा का एक तोहफा होगा।
0: साथियों, सरकार अपना काम कर रही है, अब हमारी बारी है। देश को कंक्रीट का जंगल बनने से रोकिए, ग्रीन इंडिया मिशन का हिस्सा बनिए।
1: तो साथियों, ये तो थी ग्रीन इंडिया मिशन पर हमारी एक छोटी सी चर्चा। अब आपका फिर से मनोरंजन हम करवा देते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे आस्की टू फिल्म में से ये गीत, जिसमें आवाज दी थी पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह ने।
1: गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिनका विषय है ऐतिहासिक स्थल पिरामिड्स ऑफ गीजा।
0: साथियों, गीजा के पिरामिड्स विश्व के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये मिस्र के गीजा शहर में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हैं।
1: और प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता, अद्भुत वास्तुकला और उन्नत इंजीनियरिंग का प्रतीक माने जाते हैं। इनका निर्माण लगभग 2580 से 2510 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन मिस्र के फराओं के मकबरों के रूप में कराया गया था।
0: साथियों, गीजा परिसर में तीन प्रमुख पिरामिड हैं, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध ग्रेट पिरामिड फराओ खुफू के लिए जाना जाता था। इसके अलावा खाफरे और मैनकोर के पिरामिड भी अपनी विशालता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।
1: इन पिरामिडों का निर्माण लाखों विशाल पत्थरों से किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है। आधुनिक तकनीक के बिना इतने विशाल स्मारकों का निर्माण आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है।
0: यह प्राचीन विश्व के सात अभूतपूर्व अजूबों में शामिल एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी सुरक्षित रूप से अस्तित्व में है।
1: पिरामिडों के सामने स्थित विशाल ग्रेट स्फिंक्स भी अपनी रहस्यमय आकृति और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है।
0: साथियों, गीजा के पिरामिड केवल मिस्र की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की प्रतिभा, मेहनत और रचनात्मक क्षमता का अद्भुत उदाहरण भी है।
1: दोस्तों, वर्ष 1979 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे इनके वैश्विक महत्व को और अधिक मान्यता मिली।
0: साथियों, आज हर वर्ष लाखों पर्यटक दुनिया के विभिन्न देशों से इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए आते हैं और इनके निर्माण से जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। सदियां बीत जाने के बाद भी गीजा के पिरामिड अपनी भव्यता, ऐतिहासिक विरासत और रहस्यमय आकर्षण के कारण पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं।
1: तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक स्थल पिरामिड ऑफ गीजा की। अब सुनवा देते हैं आपको तत्व स्वरूप शुक्ला से ये काव्य पाठ।
2: मेरी कविता है उम्मीद। उम्मीद का अर्थ होता है आशा। ये कविता आधारित है एक बालक पर, एक बालक जो उम्मीदें लेकर के शहर की ओर बढ़ता है अपने गांव से। उम्मीदें कई तरह की हो सकती हैं, पैसा कमाने की उम्मीद, बड़ी नौकरी हासिल करने की उम्मीद, अलग अलग उम्मीदें। ये कविता एक बालक की मनोदशा पर है, कैसे वो उम्मीद लेकर निकलता है अपने घर से, अपना माँ बाप का घर छोड़ता है और उम्मीद करता है खुद से कि जब वो शहर में कदम रखेगा तो वो तहलका मचा देगा, पूरी दुनिया को जीत लेगा और बहुत अच्छी नौकरी हासिल करेगा, जो भी उसका उद्देश्य है, जैसे पैसा कमाना, तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। ये कविता इसी उम्मीद पर आधारित है। लेकिन जब वो दुनिया की वास्तविकता देखता है, जब शहर में कदम रखते ही लोगों की वास्तविकता देखता है, तो उसका हृदय टूट के बिखर जाता है, उसकी आत्मा रोने लग जाती है, उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि दुनिया में फैली नफरत और छल उसे तोड़ के रख देता है। ये कविता इस उम्मीद पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। कभी खुद पर यकीन करता था मैं, कभी खुद पर यकीन करता था मैं, पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश रखता था मैं, पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश रखता था मैं। वक्त ने वो यकीन और ख्वाहिश दोनों छीन लिए मुझसे। वक्त ने वो यकीन और ख्वाहिश दोनों छीन लिए मुझसे, जैसे हो किसी ना समझ बच्चे की कोरी सी कल्पना, देखा हो किसी मासूम ने खुली आंखों से बस एक सपना। जानता हूं मैं, हाँ हाँ जानता हूं मैं, उतना ताकतवर तो नहीं हूं, पर जरा मासूम की नजरों से तो बताओ, पर जरा उस मासूम की नजरों से तो बताओ, कहां मैं गलत हूं और कहां मैं सही हूं। उसे तो मालूम भी नहीं कि दुनिया छल फरेब से भरी है, उसे तो मालूम

0: मालूम भी नहीं कि दुनिया छल फरेब से भरी है, तुम रखना पूरी ईमानदारी। हाँ हाँ तुम रखना पूरी ईमानदारी, पर वो तो बेईमानी करने के लिए ही खड़ी है। माँ बाप की जिंदगी, दो वक्त की रोटी और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना उस रास्ते पर जहां से घर छोड़ के निकला था ना, बस वहीं कहीं पड़ी है, बस वहीं कहीं पड़ी है। मेरी उम्मीद कविता इस बात का परिचय है कि कविताएं एक नई लीक पर, यानी कि मनोदशाओं पर भी आधारित हो सकती हैं। हाल ही मैंने एक नई कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कलयुग। कलयुग से मेरा तात्पर्य एक ऐसे युग से है जहां मानव की दुर्दशा है, जहां स्त्री की दुर्दशा है, जहां समाज के नैतिक मूल्य लगातार घटते जा रहे हैं। हमारा समाज मानसिक रूप से और नैतिक रूप से लगातार क्षीण होता चला जा रहा है। एक कवि है जो बड़ी प्रार्थना करता है नेताओं से, समाज से, लोगों से, लेकिन अंत में हार जाता है और उस ईश्वर के चरणों पर गिर जाता है जब वो नारी की इतनी बुरी दुर्दशा देखता है और उस ईश्वर से भीख मांगने लगता है। ये कविता उसी पर आधारित है। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये कैसा कलयुग छाया है, ये कैसी तेरी माया है। हे प्रभु, ये कैसा कलयुग छाया है, ये कैसी तेरी माया है। नारी जो नर पर भारी थी, सबला थी ना हारी थी। नारी जो नर पर भारी थी, सबला थी ना हारी थी। पग पग दर दर भटक रही, मानो गिद्धों के मन को उसकी स्वच्छंदता खटक रही। पग पग दर दर भटक रही, मानो गिद्धों के मन को उसकी स्वच्छंदता खटक रही। त्रेता में एक रावण था, द्वापर में दुशासन आया। नारी मान को छेड़ा था, उसकी अस्मिता को घेरा था। तब तुम रघुपति राघव राम बने, घनश्याम बने और उसकी लाज बचाई थी। जो खींच रहा था साड़ी, उसका चीर दिया था सीना। जो हरण कर ले गया माँ को, उसका छीन लिया था जीना। वही नारी जगदम्बा है, माँ काली है, इस सकल समाज को जनने वाली है। पग पग दर दर भटक रही, मानो गिद्धों के मन को उसकी स्वच्छंदता खटक रही। वो डरती है, हाँ हाँ वो डरती है, सुनसा गलियों से, अंधकार उन छलियों से जो घात लगाए बैठे हैं, वे ढोंग रचाए रहते हैं। वो डरती है उन छलियों से, अंधकार की गलियों से जो घात लगाए बैठे हैं, वे ढोंग रचाए रहते हैं। सहती है, कुछ ना कहती है, गुमसुम सी रहती है। सहती है, कुछ ना कहती है, गुमसुम सी रहती है। क्या उसका कोई मान नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या उसका कोई मान नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं? वहां एक पांचाली थी, यहां सैकड़ों यही सहे। ये सारी कलयुग की माया है, बस अंधकार ही छाया है। धर्म युद्ध होना था, अर्जुन ने गांडी उठाया, पर सगे देख निशब्द रह गया। सारा विश्वास उसका पल भर में ढह गया। तब तुमने न्याय का शंख बजाया था, जीव मूल समझाया था। देखो तुमको कलयुग हुंकार रहा, फिर से तुमको ललकार रहा। आ जाओ धरती पर तुम, आ जाओ धरती पर तुम, हम मिलकर पाप मिटाते हैं। फिर से धरती को हम राक्षस विहीन बनाते हैं, फिर से इस धरती को हम राक्षस विहीन बनाते हैं। धन्यवाद।
1: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे तत्स्वरूप शुक्ला से ये काव्य पाठ। अब साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि आज है सोमवार और हम आपके बीच लेकर आते हैं सवाल हमारे जवाब आपके। तो हम आपसे सवाल हमारे जवाब आपके अगले अंक, जो कि अंक नंबर 128 है, उसके सवाल पूछें। इससे पहले हम आपको बता दें, पिछले सोमवार यानी सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 के प्रश्न और उनके उत्तर। तो करते हैं शुरुआत, शिवांगी आप बताइए।
2: बिल्कुल दोस्तों, पहले आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था 29 जुलाई को यानी कि पिछले सोमवार को, जो कि सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 है, उसका पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, जिसका सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
1: साथियों, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, जिसका सही जवाब था अंटार्कटिका।
2: तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है, जिसका सही उत्तर है एक्सियोम 4।
1: साथियों, चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, जिसका सही जवाब था वेटिकन सिटी।
2: पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वही होता है जो मंजूर ए खुदा होता है, ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जिसका सही उत्तर है मिर्जा रजा वर्क।
1: साथियों, छठा प्रश्न था कि भारत की संसद का नया भवन किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसका सही जवाब था वर्ष 2023।
2: सातवां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था कि हाल ही में आयोजित AI यानी एक्शन समिट का मेजबान देश कौन सा था, जिसका सही उत्तर है फ्रांस।
1: साथियों, आठवां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका सही जवाब था शूद्रक।
2: नवा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की

0: शुरुआत कब से मानी जाती है, जिसका सही उत्तर है 1850 ईस्वी से।
1: साथियों, दसवां और अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब था सिद्ध सरहप।
0: अभिषेक, बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथियों ने हम तक पत्र पहुंचाए अपने मेल के माध्यम से, और 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही वाले हमें एक भी मेल प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि हमारे श्रोताओं ने बड़े ध्यान से प्रश्नों को सुना और उनके सही उत्तर हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। 10 में से 8 सही प्रश्नों के उत्तर वाले 2 पत्र हमें मिले हैं। पहला पत्र है साविद खान का, जिन्होंने अपना पूरा परिचय अपने मेल में नहीं दिया है। दूसरा जो पत्र मिला है वो है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से।
1: जो कि है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नाखेलाल वर्मा जी का।
0: जी हाँ, और 10 में से 9 सही जवाब वाले बहुत सारे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। पहला पत्र है नवागढ़ कटई जिला बेमतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत और पुष्पांजलि वर्मा का।
1: दूसरा पत्र जो हमें मिला है वो है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से, चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और बान्या सिंगरौल।
0: तीसरा पत्र मिला है कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मिरी ज्योति और जानवी दीक्षांत मिरी का।
1: चौथा पत्र जो हमें मिला है वो है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से, गजानन एले और नवदीप एले और विश्वदीप एले का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है पुतकी कला कवर्धा से, राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, शुमांशु पांडे का।
1: छठा पत्र जो हमें मिला है वो है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से, अभिजीत गवालकर, राही श्रीमती, सरिता गवालकर, प्रणिता, सिद्धांत गवालकर, अर्जुन गवालकर उर्फ टुक टुक।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है आकार वाइट्स बहादुरा नागपुर से, जो कि है वैशाली, शैलेश, सुमित कुमारी, ध्वनि गवालकर, परी प्रिंस और एकांश गवालकर।
1: यवतमाला विदर्भ महाराष्ट्र से हमें अगला पत्र मिला है जो कि है संतोष खड़से और विनोद खड़से का।
0: इसी क्रम में 10 में से 9 सही जवाब वाले पत्र जो हमें मिले हैं वो हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
1: इसके अलावा जो अगला पत्र हमें मिला है वो है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का।
0: अगला पत्र प्राप्त हुआ है ग्राम गुड़ाराज से पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा साहू, लवीना चंचल, बोशनी और गरीना साहू का।
1: अगला पत्र जो हमें मिला है वो है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता का।
0: अगला पत्र प्राप्त हुआ है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव।
1: अगला पत्र हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।
0: अगला पत्र जो प्राप्त हुआ है वो है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, जो कि ग्राम पीपलोर सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं।
1: अगला पत्र जो हमें मिला है वो है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेन चंद्राकर, साहिल चंद्राकर।
1: अगला पत्र हमें मिला है रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिनके 10 में से 9 सही जवाब है कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव डौली, पूजा बेबी राधिका।
1: अगला पत्र हमें मिला है विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है पड़रिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, साहिल और भारती बघेल का।
1: अगला पत्र हमें मिला है ग्राम पंचायत वढेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से वलकरण वर्मा, अंजनी, राजिम, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिनके 10 में से 9 सही जवाब हैं बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीना, वैभवी और विभूति साहू का।
1: अगला पत्र हमें जो 9 सही जवाब वाले हैं उसी क्रम में मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
0: इसी के साथ साथियों 10 में से 10 सही जवाब वाले हमें 2 पत्र प्राप्त हुए हैं। पहला है खकल विकासखंड नदीगांव तहसील कोच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर का।
1: और साथियों 10 में से 10 प्रश्न सही उत्तर वाला हमें दूसरा पत्र जो मिला है वो है ग्राम बंगला भटिया बालोस से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबका, लीना, आशुतोष अंगारे का।
0: तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2 पत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिनके 10 में से 10 सही जवाब हैं, तो हमने और अभिषेक ने मिलकर के आप दोनों के नाम की पर्ची बना ली है। और आपको पता है कि जो भी हमारे कार्यक्रम के विजेता होते हैं हम उनकी पसंद का उनको गीत सुनवाते हैं। तो अभिषेक, हम इस पर्ची में से देखते हैं किसका नाम निकलता है और कौन बनेगा सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 का विजेता।
1: हाँ शिवांगी, मैं पर्ची निकालता हूँ फिर बताता हूँ।

0: तो साथियों, पर्ची में से जो नाम निकला है वो है ग्राम बंगला भाटिया बालोस से शिव कुमार अंगाले, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे जी का। तो सबसे पहले तो इन्हें बहुत बहुत बधाई, आप विजेता हैं। और शिवांगी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिव कुमार अंगारे जी, अंजनी जी, त्र्यंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे जी को। आप बनते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 के विजेता। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी विजेता होते हैं हम उनकी पसंद का उनको गीत सुनवाते हैं। तो आइए हम अपने विजेता की पसंद का गीत सुनवाएं। उसके पहले हम आपको बता दें कि गीत के उपरांत हम आपको बताएंगे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 128 के प्रश्न। तो पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। आइए सुनवाते हैं हमारी विजेता की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्याशा सावन फिल्म से हमारी विजेता की पसंद का ये गीत, जिसमें आवाज थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।
1: गीतकार थे संतोष आनंद और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 128 के प्रश्न।
0: साथियों, पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा।
1: दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है।
0: तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
1: चौथा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है।
0: साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न है कि देश के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है।
1: छठवां प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है।
0: साथियों, हमारा सातवां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
1: आठवां प्रश्न है, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा किस राज्य में किया गया है।
0: साथियों, हमारा नौवां प्रश्न है कि तेल निर्यातक देशों के प्रसिद्ध संगठन ओपेक प्लस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है।
1: दसवां और अंतिम प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
0: तो साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है सवाल हमारे जवाब आपके अंक 128 युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 4710001।
1: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com। इसके लिए हमें आपके पत्र 13 जुलाई तक की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें।
0: तो शिवांगी, हम अपने साथियों को अब बता देते हैं आज की रोजगार सूचना।
1: बिल्कुल अभिषेक, दोस्तों हम आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। BSUSE योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है सहायक प्रोफेसर।
1: पदों की संख्या है 3687।
0: उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट उत्तीर्ण होना चाहिए या PhD की डिग्री धारक होना चाहिए। ये तो थी उनकी शैक्षणिक योग्यता।
1: और आपकी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 43 वर्ष होना चाहिए।
0: और आयु सीमा में जो छूट है वो नियमानुसार आपको दे दी जाएगी।
1: अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट bsusc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों, इसी के साथ बता देते हैं आपको कल के कार्यक्रम। कल होगी चर्चा
0: और साथ ही साथ आला गायक सुखराज कुशवाहा के साथ रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी विशेष बातचीत और साथ में होगी रोजगार सूचना।
1: तो इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है हमें आप सभी से विदा लेने की ओर। तो अनुमति दीजिए अपनी दोस्त, अपने होस्ट

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजीव सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी की रचना, आवाज़ें थीं सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की फिल्म

0: उनका नाम था सत्याग्रह।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम
2: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जैकपॉट फिल्म में शारिब और तोशी की आवाजें, तुराज और अजीम शिराजी की रचना है, संगीतकार हैं शारिब और तोशी, का संगीत है, सिंगर हैं अरिजीत सिंह।

कार्यक्रम लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जैकपॉट फिल्म में शारिब और तोशी की आवाजें। तुराज और अजीम शिराजी की रचना है, संगीतकार हैं शारिब और तोशी का संगीत है, सिंगर हैं अरिजीत सिंह।

जैकपॉट फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। और लीजिए अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको तनु वेड्स मनु फिल्म का गाना सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लिखा है राजशेखर ने और संगीतकार हैं कृष्णा, आवाज लहम्बर हसीनपुरी की।

तनुवर्ट्स मनु फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर लोकधारा में कलाकार होंगी रज्जू राजा। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा आप सुनेंगे अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी, इस विषय पर डॉक्टर रुचि से रविन्द्र कुमार प्रजापति की भेंट वार्ता। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:15 पर होगी समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर परिचर्चा। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर JP शाक्य, अरुण देव खरे, डॉक्टर ज्योति पयासी और डॉक्टर राम सिंह पटेल। आज रात आकाशवाणी दिल्ली से हम रैली करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कल हमारी पहली सभा में बुंदेली दर्पण में आप सुनेंगे आशाराम साहू का बुंदेली काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। कल सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कार्तिक कुमार से सितार पर बजाया राग अहिर भैरव और पूर्वी धुन। 9:00 लोकरंग के कलाकार होंगे अनुपम जैन। 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही गीतकार। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी होगा कल सुबह 10:05 पर। इसमें आप सुनेंगे प्रियंका खरे की वार्ता, बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व। 10:30 पर इसे एक बार फिर से सुन लें। 10:35 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

रिले होगी, इसमें आप सुनेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे और 2:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम में होगी सोनल शुक्ला की कहानी पुनर्विवाह, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

कल हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। आल्हा गायक सुखराज कुशवाहा से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत भेंट वार्ता क्रम में, प्रायोजक होंगे सुखराज कुशवाहा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:40 पर और रात 8:15 पर। कल शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम 6:30 पर कल लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे चंद्रभूषण पाठक। इनके गाए कुछ बुंदेली लोकगीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनाएंगे। घरनी कार्यक्रम में कल शाम 7:20 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह विषय पर डॉक्टर सोमदत्त त्रिपाठी से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। कल रात 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। दिल्ली से कल हम रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद कहा कि एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के संकल्प को साकार करने का ये एक प्रयास है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खातों का विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ब्राजील के विश्व कप से बाहर होने के बाद दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
3: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
3: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
3: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
3: जिसके अंतर्गत

0: विभिन्न प्रकार की पहले हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित

0: आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी।
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे,

0: से लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशन हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठकर के हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी

हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई

0: में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है
1: जी।
0: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं
1: जी।
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया
1: वो
0: सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है,
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440432 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं रज्जू राजा चौहान। इनकी आवाज में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ये देवी भजन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट

0: कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लोकधारा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रज्जू राजा चौहान के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। इनकी आवाज में लीजिए अब हम आपको सुनाते हैं एक कहरवा।

ये कहरवा अभी आप सुन रहे थे रज्जू राजा चौहान से। इनकी आवाज में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं एक राई।

बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से और कलाकार हैं रज्जू राजा चौहान। इनकी आवाज में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं एक शिव भजन।

इसी लोक शैलीबद्ध लोकगीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थी रज्जू राजा चौहान। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गुमशुदा सूचना। सूचित किया जाता है कि सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल, उम्र करीब 15 वर्ष, निवासी ग्राम जौराखेरा थाना आटा जनपद जालौन से बिना बताए दिनांक 27 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे कहीं चला गया। इस मामले में शिकायत थाना कोतवाली उरई में पंजीकृत करा दी गई है। जिस किसी भी व्यक्ति को सचिन कुमार के बारे में जानकारी मिले वो इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। सूचना देने वाले को 10,000 रूपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है। मोबाइल नंबर है 8546050036। क्षेत्राधिकारी कालपी का नंबर है 9454401429। थाना AHT का मोबाइल नंबर है 7839860039। इसके अलावा विवेचक का मोबाइल नंबर है 6386653249। इसके अलावा एक अन्य सूचना हम आपको दे रहे हैं। गुमशुदा राजबहादुर पुत्र रामेश्वर, निवासी मोहल्ला उमराखेड़ा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन, उम्र करीब 35 वर्ष है, हुलिया इस तरह है, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत, कद करीब 5 फुट 6 इंच। गुमशुदगी के दौरान पैंट और शर्ट पहने हैं, बाएं हाथ पर हनुमान का टैटू और दाहिने हाथ पर शंकर जी का टैटू बनवाया हुआ है। सूचित किया जाता है कि गुमशुदा राजबहादुर दिनांक 11 जुलाई 2025 को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनके संबंध में थाना कोतवाली उरई पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। अगर किसी को भी राजबहादुर के बारे में कोई जानकारी मिले तो इन नंबरों पर सूचित करें। मोबाइल नंबर है 9258439058। क्षेत्राधिकारी नगर उरई जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 9454401427। प्रभारी निरीक्षक उरई जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 9454403599। और चौकी प्रभारी कोंच बस स्टैंड कोतवाली उरई जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 7839002448। जिस किसी को भी राजबहादुर के बारे में कोई भी जानकारी मिले वो इन मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले को उचित इनाम की घोषणा भी की गई है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। इसके पश्चात 7:20 पर आकाशवाणी छतरपुर से ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
3: ऐसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज करना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री रहता है ना।
4: मुझू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे, वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगड़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
2: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे हैं। तो ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
0: मुख्यमंत्री डॉ यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है।

0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रूपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुने वाले सभी भैया बहनन को नंदनी बहन की राम राम पहुंच जावे। और भैया बहन हो देखो पानी तो खूब बरस गयो है। कछु भैया बहनन की बोनी हो गई और कछु जने अबे लगे हैं खरीफ फसल की बोनी करबे में, है ना। और भैया बहन हो देखो बुवाई से पहला अपने भैया बहनन को बीज उपचार करने हैं, जिसे देखो अपनो बीज जल्दी अंकुरित हो जात। कई बार देखो गयो है कि देखो बीज जल्दी जमत नहीं है खेतन में, है ना। तो देखो अपन को बीज उपचार करने हैं। हम तो सभी भैया बहन से जय के हैं कि देखो बुवाई से पहला बीजन को फफूंद कीट और बीमारियों से बचा के बचाऊने हैं, तो ये लाने अपन कार्बेंडाजिम या थीरम से उपचारित कर लेवे। 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित अपन को करने हैं। इके बाद बीज अपने खेतन में बोने हैं, जिसे देखो अपनो बीज अंकुरित बढ़िया हो है और देखो अपनी फसल भी अच्छी हो है, अपने किसान भैया बहनन को आमदनी भी अच्छी हो है ना। बीज उपचारित की जानकारी अपन अपने किसी विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं, लेकिन बिना उपचारित बीज के अपने खेतन में नहीं बोने आए। और भैया बहनों देखो एक बात को अपने भैया बहनों को और ध्यान रखना है कि अपनी जोन खरीफ की फसल है उकी देखभाल करवो बहुत जरूरी होता है। अब जो नहीं है कि खेतन में बैदई और अपन देखभाल ना करवे, अपनी फसल से अपन को ज्यादा पैदावार लेने हैं तो देखो जल निकास, खरपतवार, कीट प्रबंधन और संतुलित उर्वरकन को प्रयोग करने पर है। अपन खेतन में कई बार देखा थे कि बरसात को पानी भर जाता है और भरू राहत है, तो अपन जल निकास की व्यवस्था भी करवे। अपनी फसल को कीट मकोड़ रोग राई और दीमक से बचा के रखने हैं। समय समय पे फसल की निराई गुराई करत रहवे। ज्यादा खरपतवार हो जाए तो खरपतवार नाशी दवाई को छिड़काव भी करने हैं। बारिश के मौसम में अपनी फसल खराब तो नहीं हो रही जो भी देखत रहने, समय समय पे ध्यान रखने। जौन छोटा जानवर है ढोर बछेरू है उनसे भी देखो बचा के रखने हैं। अपन अपनी फसल की देखभाल करते रहे हैं तो देखो फसल बढ़िया हो है और अपनी भैया बहनों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी भी हो है ना। और भैया बहन हो देखो अब अपनी भैया बहनों को सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी विषय पे डॉक्टर रुचि से इनसे बतकाव कर रहे हैं अपने नंदू भैया, तो लो सुनो।
1: पंच भैया रो देखो बीच बीच में अपन के लाने मौका की जानकारी लेके आउत हैं और आज ऐसे एक मौका की जानकारी अपन के लाने लेके आ रहे हैं डॉक्टर रुचि जू। तो डॉक्टर रुचि जू अपन को ग्राम सभा कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार किसान बहनों एवं भाइयों, मैं डॉक्टर रुचि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी। आइए हम इसे थोड़ा और सरल और आसान भाषा में समझते हैं।
1: डॉक्टर साहिब सबसे पहले अपन जो बताओ थी कि खेती किसानी में बीज को क्या महत्व है।
2: अच्छा बीज जो है कृषि उत्पादन का आधार है, जिस प्रकार से मजबूत नींव से भवन मजबूत बनता है तो उसी प्रकार गुणवत्ता युक्त बीज से जो है अच्छी फसल प्राप्त होती है और बीज की जो गुणवत्ता है वो उत्पादन को 15 से 20% तक प्रभावित कर सकती है।
1: अपन ने जो तो बता दो कि बीज को महत्व का है, लेकिन समस्या होते आउत है कि हमारे किसान भैया जा पहचान कैसे करें कि जो बीज हैं वे उपचारित बीज हैं अच्छे बीज हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे।
2: अच्छा जो बीज है वो शुद्ध स्वस्थ होना चाहिए, ऐसे अधिक अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए, निर्धारित किस्म का होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और बीज का जो आकार और रंग है वो भी एक समान होना चाहिए।
1: हमारे किसान भैया प्रमाणित बीज ही काय लेवे उसे का फायदा होते।
2: सर

0: प्रमाणित बीज जो है गुणवत्ता परीक्षण के बाद उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे जो है अंकुरण अच्छा होता है, रोगों का प्रकोप कम होता है तथा उत्पादन जो है अधिक मिलता है।
1: अच्छा, और उन्नत किस्म की जो ना, मतलब किस्में रहती हैं और जो स्थानीय किस्में हैं, इनमें क्या अंतर रहते हैं, हमारे किसान भैया कौन प्रकार से पहचान करेंगे?
0: ऐसे जो उन्नत किस्में हैं वो वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा विकसित की जाती हैं, जिनमें अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता के गुण होते हैं, और जो हमारी स्थानीय किस्में होती हैं उसमें ये विशेषताएं जो है अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, एक बात हम बताओ दी कि जो हम संकर प्रजाति के बीज रहते हैं, वे कौन प्रकार से होते?
0: जो है संकर प्रजाति जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनमें दो श्रेष्ठ किस्मों के संकरण से विकसित बीज को कहते हैं। दो श्रेष्ठ किस्मों के संकरण से जो बीज विकसित होंगे उसे संकर बीज कहते हैं। इससे जो है उत्पादन अधिक और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है।
1: ज्यादातर देखने में आउट है कि जो हमारे किसान भैया रात हैं, वे अपने पुराने बीज संभाल के रख लिए थे और हर साल उनको उपयोग करते हैं, तो ईखा कौन प्रकार से करें भी?
0: सिर्फ कुछ फसलों में कर सकते हैं, लेकिन संकर बीजों में हर वर्ष जो है नया बीज खरीदना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें इसका उत्पादन कम हो सकता है।
1: डॉक्टर साहिबा, एक बात हम बता दी कि जब हमारे किसान भैया बाजार जाऊ थे, कोनो दुकान पे जाऊ थे, तो बीज खरीदते समय भी कौन कौन सी विशेष बात उनको ध्यान रखें, जो उनसे उन्हें समझ में आ जाए कि जी बीज अच्छे हैं और उनके लाने लाभकारी हुई है?
0: सर देखिए, बीज का जो लेवल है वो अवश्य देखना चाहिए। बीज का अंकुरण प्रतिशत हो गया, किस्म का नाम हो गया, प्रमाणित चिन्ह हो गया और अंक वैधता अवधि हो गई, ये बीज खरीदते समय अवश्य देखना चाहिए। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे अपन कोनो सामान खरीदते हैं बाजार से, खावे पे भी की चीजें खरीदते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि समाप्ति की तारीख का है, ऐसे इनमें भी ध्यान रखने हैं।
0: जी सर।
1: डॉक्टर साहिब, एक बात बताओ थी कि बीज उपचार का कहा, हमारे किसान भैया कौन प्रकार से ध्यान रखें कि जो बीज उपचारित हो गए?
0: सर बुवाई से पहले जो है बीज को फफूंदनाशी हो गए, जीव उर्वरक हो गए और अन्य रसायनों से जो उपचारित करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम बीज उपचारण कहते हैं, उपचार कहते हैं।
1: वैसे तो हमारे किसान भैया जानते ही हैं, लेकिन अपन और बताओ दी कि बीज उपचार करने से कौन कौन से लाभ होते हैं?
0: सर बीज उपचार से जो है इसमें बीज एवं मृदा जनित जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा मिलती है और अंकुरण बेहतर होता है तथा पौधों की प्रारंभिक वृद्धि जो है वो अच्छी हो जाती है।
1: अच्छा, बीज उपचारित करने से उत्पादन बढ़ाते हैं?
0: हाँ, बीज उपचार से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है।
1: एक बात और समस्या अपने किसान भैया के लाने आते हैं कि जो उनको जो क्षेत्र है, उनकी जो जगह है, उसमें वे कौन प्रकार से चयन करें कि उनके लाने कौन प्रकार से बीज लाओ चाहिए, कैसे बीज की जरूरत रहता है?
0: सर जो उपयुक्त किस्म का जो चयन है वो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, कृषि विश्वविद्यालय हो गए या कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किस्मों का जो है चयन करना चाहिए हमें।
1: कभी कभी देखने में आउट है कि अपना जो जलवायु है वो बदल रहते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तो ई में हमारे किसान भैया कौन प्रकार से बीजन को चयन करें?
0: जो है सर जलवायु परिवर्तन में जो है सूखा सहनशील किस्में हो गई और गर्मी सहनशील या फिर रोग प्रतिरोधक की जो किस्में हैं वो वर्तमान परिस्थितियों में अधिक उपयोगी हैं।
1: बिल्कुल, अपन ने बताओ कि इन बातों को ध्यान रखने, तो एक बात बताओ थी कि फसल बुवाई के लाने सिर्फ अच्छे बीजन की जरूरत ही रात है कि और भी कछु बातों को ध्यान रखने हैं?
0: सर अच्छी उपज, बेहतर गुणवत्ता और कम उत्पादन जो है लागत के कारण किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
1: अब बात आउट है जब फसल कट के अपनी तैयार हो जाते हैं, तो बीज को जो फसल बात है उसको भंडारण हमारे किसान भैया कौन किन बातों को ध्यान रखें, कौन प्रकार से करें?
0: बीज को सर जो है सूखी, ठंडी और साफ जगह पर रखना चाहिए तथा नमी और कीटों से बचा कर रखना चाहिए।
1: उन्होंने बता रही कि बीज के लाने ये प्रकार से खरीदने हैं, इन बातों को ध्यान रखने। कछु किसान भैया के पास एक समस्या आउट है कि जी बीज हमें मिले कहाँ, कहाँ पे जाने चाहिए?
0: सर बीज जो है सरकारी बीज भंडार हो गए, कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग केंद्र हो गए और सरकारी सहमत समितियां और जो अधिकृत विक्रेताओं हैं उनसे बीज हमें खरीदना चाहिए।
1: अच्छा, जो तो अपन ने बता दो कि बीज ऐसे खरीदने चाहिए, तो आसानी से बीज मिल जाते हैं हमारे किसान भैया के लाने?
0: हाँ सर, अगर आप इन सब के थ्रू लेते हैं तो आपको आसानी से बीज मिल जाएंगे।
1: अब बात आउट है कि बीज बदलवो भी जरूरी है का?
0: हाँ सर, लगातार एक ही बीज के उपयोग से उसकी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता जो है कम हो सकती है, इसलिए जो है समय समय पर आपको बीज बदलना आवश्यक है। एक और सवाल उठता है कि सीड मतलब बीज जो प्रतिस्थापन दर है वो क्या है, मतलब बीज बदलने की जो दर है वो क्या है, तो इस पर मैं कहना चाहूंगी कि किसान द्वारा पुराने बीज के स्थान पर नए प्रमाणित बीजों के उपयोग का जो प्रतिशत बीज है, बीज प्रतिशत दर है, वही जो है बीज प्रतिस्थापन दर कहलाती है।
1: जो हमारे कृषि केंद्र हैं, कृषि विस्तार अधिकारी

0: हैं, वे कौन प्रकार से हमारे किसानों की सहायता कराते हैं, इनके बारे में और बताओ दिए बोल।
1: सर, कृषि विश्वविद्यालय जो है नई उन्नत रोग रोधी जो रहते हैं और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करते हैं तथा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए योगदान है।
0: डॉक्टर रुचि, अपन ने बहुत सी जानकारी अपन ने बता रही अच्छी, लेकिन अंत में कछु ऐसी कछु बातें अपने मन में और हुई हैं जो उनसे हमारे किसान भैया के लिए लाभ मिले, अच्छी भी जन की मालूम।
1: यदि किसान अच्छी फसल और अधिक आय चाहते हैं तो उन्हें गुणवत्ता युक्त एवं प्रमाणित बीज का चयन करना चाहिए। याद रखें, अच्छा बीज ही जो है अच्छी फसल और किसान की समृद्धि की पहली सीढ़ी है। बीज केवल एक दाना नहीं बल्कि किसान के सुनहरे भविष्य का आधार है, इसलिए हमेशा जो है प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीज ही अपनाएं, वैज्ञानिक सलाह का पालन करें और खेती को लाभकारी बनाएं।
0: डॉक्टर रुचि, अपन ने किसान भैयन के लाने और बहनन के लाने एक अच्छी बात बताई कि अगर अपन के लाने अच्छी खेती जाने हैं तो सबसे जरूरी है अच्छो बीज हो चाहिए,
1: जी
0: जो
1: सर,
0: उनसे हमारी फसल अच्छी हुई है और हमेशा किसान के लाने लाभ हुई है। अपन हमारी ग्राम सभा में पधारी और अपन ने इतने नौनी और मौका की जानकारी दी, अपन के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे अपने भैया बहन ने देखो कैसी नौनी जा भेंट वार्ता सुनी। जी को बसाय है तो अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी। डॉक्टर रुचि से बतकाओ करो है तो नंदू भैया ने कहे के देखो अच्छा बीज और अच्छी फसल के संगे संगे अपने भैया बहन को देखो अच्छे अच्छे पेड़ पौधा सोई लगाऊ है, जिसे देखो अपना पर्यावरण अच्छो बनो रहे, है ना। और भैया बहनों देखो बरसात भी शुरू हो गई है तो देखो अपन को बरसात के मौसम में कछु औषधीय पौधे भी लगाऊने हैं। जे औषधीय पौधे गमलों और जिते खाली जमीन होए उते अपन आसानी से लगा सकते हैं। औषधीय पौधे पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य दोनों के लाने बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये में तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, मीठी नीम, अश्वगंधा और आंवला, जे सब अपन अपने औषधीय पौधे गुणन से भरपूर होते हैं। इनको अपने भैया बहन को लगाने हैं। इनको देखो अपन छत में गमला रख ले, उनमें देखो तुलसी है, एलोवेरा है, गिलो है, जे अपन लगा लेवे, जे सभी भैया बहन को औषधीय पौधे लगाने हैं और इनकी देखभाल भी करने जनिया के लगा दें और उनकी देखभाल ना करवें। चाहे देखो औषधीय पौधे हों चाहे पेड़ पौधा हों, उनको देखो अपन जरूर लगावें, उनकी देखभाल जरूर करवें। और भैया बहन हो देखो अब इंतजार कर रहे हूँ यहाँ पर रमतुला कार्यक्रम को, तो अब बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं, अपने भैया बहनों को सुनवा रहे हैं उनको मनपसंद कार्यक्रम रमतुला कार्यक्रम, जो कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स और ईमेल और पत्रन पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम है। और भैया ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की, तो लियो अपन सुने।

0: भैया बहन कौन नंदनी बहन की राम राम। और भैया बहन हो देखो रमतुला कार्यक्रम शुरू कर है। अपने भैया बहन को बता दें ई कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला नंबर है 2415 88 यानी 241588 और दूसरा नंबर है 2980 29 यानी 298029। और भैया बहन देखो छतरपुर को एसटीडी कोड है 076782 यानी 07682। तो अपने भैया बहन को ई नंबर पे फोन नंबर लगा के अपनी पसंद को लोकगीत सुनने हैं। रमतुला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक करी जात है और ई कार्यक्रम को प्रसारण सोमवार के दिन ग्राम सभा में करो जात है। और भैया बहन देखो ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। तो शुरू करते हैं आज को जो रमतुला कार्यक्रम। रमतुला कार्यक्रम में जयंत विश्वकर्मा को गाँव भाव लोकगीत सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल।
1: ग्राम पोस्ट आप अपना नियम सुचा कैलाश नारायण नाम से बोल रहे जी सर। आज हमको सुनना है जयंत विश्वकर्मा के स्वर में साक्षात बेटी बचाओ लोकगीत को सुनना है।
2: तो हम राजाराम अहरवाल बोल रहे हैं पहले नंबर वाला
3: वो। हेलो रमतुला से मैं जिला पन्ना मध्यप्रदेश से एके पांडे बात कर रहा हूँ। वो मुझे चौथे नंबर का लोकगीत जयंती विश्वकर्मा वाला है सुनवा दीजिए।
4: ग्राम पनवाड़ी जिला महुआ से मैं सुनीता बात कर रही हूँ मैम। चौथे नंबर का सुना देना जयंत विश्वकर्मा की आवाज है।
5: जी मैं ग्रामो पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनी राम पाल बोल रहा हूँ जी। हमें सुनना है जयंत विश्वकर्मा जी की आवाज में बेटी बचाओ वाला गीत।
0: और भैया बहन जो लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठियां पाती सो आई हैं। जा चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है।

ईमेल पे ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव राघवेंद्र इंद्रपाल अरविंद दिव्यांशी रिया रेनू आराधना और रोनका यादव ने जय चिट्ठिया लिखी है सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर और वंदना गोहर ने स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू और पप्पी भाटिया जय चिट्ठिया लिखी है ग्राम दतरेंगी से भागवत वर्मा शांति लीलावती विनीता और रौद वर्मा ने जय लोकगीत सुनबे के लाने चिट्ठिया लिख पहुंचाई है पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया बन्ने बुजुर्ग पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम आशीष बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी सार्थक पवित्रा कपूर सिंह घोष और सीमा वर्मा जय चिट्ठिया लिखी है मामना जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोहन सिंह राजपूत ललित और इनके सभी परिवार वाले जवाहरपुरा जिला टीकमगढ़ से घनश्याम दास अहरबा अंजलि कृष्णा और कीति ने ग्राम कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता नीलम नितिन पलक करण निहारिका और वंश भत्ता तो ले इन सभी भैया बहनों की पसंद में अपन सुनत है जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत

0: जी सर, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकन गुजर बोल रहा हूँ सर जी। रामनाथ तहरवार की आवाज में सुनना है सर जी।
1: हेलो रमचुला सर, नमस्कार। ग्राम चिन्नौदी तहसील पिछो जिला सीपरी से आपका नियमित श्रोता सालक राम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सर जी। आज श्री रामनाथ अहरवाल जी को गांव लोग भी सुनवा दिए सर पहले नंबर को।
2: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। आज सर हमको ये सुनवा दिए रामनाथ अहरवाल का पर्यावरण गीत है।
3: सर जी हम बोल रहे हैं महुआ मोहल्ला हवेली दरवाजा से छुपा हूँ। सर जी हमें यहाँ दूसरे नंबर का लोकगीत सुनना है, कलाकार का नाम तो पता नहीं है।
4: मोहली कला जिला टीक पता का बोले सुनवा दो पहले नंबर पे है रामनाथ अहरवाल की आवाज में पर्यावरण लोग।
5: हम बोले मोहल जंतपुरा पनवाली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवदीन अहरवाल बात कर रहे हैं। लोकगीत सुनवा दो रामनाथ अहरवाल जी की आवाज में।
6: और भैया बहन हो जो लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठिया पाती सोई आई हैं। ग्राम मझगुआ कला पोस्ट अमरौनिया जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा, अनन्या, अनुष्का, अभिमन्यु यादव। जा चिट्ठिया लिखी है ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरिबिलास सिंह, तोमर, दीपू, अमित, अंकित, डोली, वर्षा और उनके सभी घर वाले। तो लो इन सभी भैया बहन की पसंद पे अपन सुनते हैं जो पर्यावरण लोकगीत जीखों गा रहे हैं भैया रामनाथ अहरवाजू।

0: रमतुला कार्यक्रम में लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना लाल सैनी को गाओ युगल लुगी सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: जी आज हमको लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना लाल सैनी जी की आवाज में युगल लुगी को सुनवा देना।
2: जी भैया, योगेश चांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी प्रसाद जी के स्वर में सुनवा देंगे।
3: ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। सर जी, आज हमको 30 नंबर का सुनना है लक्ष्मी त्रिपाठी जी की आवाज में।
4: मैं ग्राम कर समाज जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ, ये स्वर में सुना देना।
5: फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से। हमें लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना

0: सैनी जी की आवाज में ये कोई गीत सुनना है।
1: गुड्डू चौबे बोल रहे बम हॉल ढूंढा जिला सागर से, लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज में लोग गीत सुनवा दो सर।
2: जी मैं ड्रामा कोच पूना कुटमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं सर। आज हमको दूसरे नंबर पर लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना लाल सोनी जी की आवाज में एक योगन लोकगीत है, वो लोकगीत सुनना है।
3: हम पाठक मोहल्ला मोहल्ली कला से बोल रहे हैं सर, पाठक सर हमें दूसरे नंबर पर लोकगीत सुनवा दो लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज।
4: हेलो रामचूला से ग्राम पंचायत छिटीपुर तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। श्रीमान जी मेरा नाम है सरनाम सिंह रजक। श्रीमान जी आप मुझे युगल गीत सुनवा देना, युगल गीत।
5: जी रामचूला से मैं बीरेंद्र कुमार शुक्ला, आज लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना लाल सैनी जी की आवाज में दूसरे नंबर को।
6: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
6: हम ग्राम पनवारी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा बात कर रहे हैं मैम। आज हमें दूसरे नंबर का गीत सुनना है, मुन्ना लाल सैनी और लक्ष्मी त्रिपाठी जी की आवाज में।
8: जय माँ भोराज रेडियो श्रोता संघ सरकनपुर जिला की चवन मध्य प्रदेश से संतोष कुमार साहू बात कर रहे हैं। आज मुझे लोकगीत सुनना है, दूसरे नंबर का लोक है, मुन्ना लाल सैनी और एवं लक्ष्मी त्रिपाठी जी की आवाज में लोकगीत सुनना चाहते हैं दूसरे नंबर का।
9: चंद्रमान नामदेव ग्राम पोस्ट देरी जिला सतापुर से बोल रहे हैं मैडम जी, हमें सुनना मुन्ना सैनी और लक्ष्मी की आवाज में जो लोकगीत सुना दीजिए।
7: और भैया बहनों यही लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठिया पाती सोई आई हैं। जय चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट सेंद्री जिला निवाड़ी से अनिल कुमार अहरवा, संतोष बती, ललती ज्योति शिवानी और सालनी।

0: पूत बड्डे भैया विनीता गुरु महाराज और इनके सभी परिवार वाले। जा चिट्ठिया पाती लिखी है ग्रह खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष लाड़ू और कोयल मल्होत्रा ने ग्राम बा पोस्ट सौरई जिला ललितपुर से संतोष नामदेव अभय अनिल ज्योति संजना भारती और उनके परिवार वाले भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता कमला देवी सुधा कविता पंकज आयुषी और मीहू ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने जा चिट्ठिया लिखी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारिणी सूरज ज्योति रियांश ठाकुर मोर टक्का माफी जिला खंडवा उत्तर प्रदेश से जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम ललित मनीषा शुभम भावना कनिका आदित्य और मानस पटेल ने जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है मृतला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से रामजीवन राजपूत रामलन भूरा सूर्यांश ऋषिकांत और इनके सभी घर वाले। तो लियो इन सभी भैया बहनन की पसंद पे अपन सुनत है लक्ष्मी त्रिपाठी और मुन्ना लाल सैनी को गाओ भाव जो योगल गीत।
1: गुस्सा

0: रमतुला कार्यक्रम में मथुरा प्रसाद सुमन को गाँव भाव लुगी सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: हेलो रमतुला से सिंगाड़ी नदी कबीर आश्रम से राकेश दास कबीरपंथी बोल रहा हूँ। चौथे नंबर पर सुनवा देना गाना लोकगीत मथुरा प्रसाद सुमन की आवाज में सुनवा दे चौथे नंबर का।
2: ग्राम प्रगाना जिला ललितपुर से शालिक राम पटेल बोल रहे सर, हमको मथुरा प्रसाद सुमन को गीत सुनवा सर।
0: और भैया बहन हो जो लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठिया पाती सोई आई है। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव मंची शिवम राहुल नरेंद्र धांसु छोटू मिन्नी सपना खुशबू रीना रेखा ममता और इनके सभी परिवार वाले। जय चिट्ठिया लिखी है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना मीना राना मोनका नूपुर रिश्का और रोबिन ने। ग्राम दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक झाविंद वर्मा ने। जय चिट्ठिया लिखी है ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल शीला और गायत्री धनजे ने। खुदी रोड मानपुर से विजय बैद रानी बैद महिमा बैद नीतू और उनके सभी घर वाले। जय चिट्ठिया लिख पहुँचाई है ग्राम कनाय और कैतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्य प्रकाश अहरवार ठाकुर दीन रामहेत राम रतन राम बाबू रविशंकर लेखराम प्रांशु किरण बबली ज्योति प्रभा पूजा दीपा और इनके सभी घर वाले। जा चिट्ठिया लिख पहुँचाई है ईमेल पे हमें भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता निखिल और अंकित कांगड़ा ने। जा चिट्ठिया लिखी है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमारत दिलीप वर्मा।

0: जय सोनी, अरुण, पवन और इनके सभी परिवार वाले। इन सभी भैया बहनों की पसंद पे सुन रहे हैं अपन मथुरा प्रसाद सुमन को गाओ भाव जो लोकगीत।
1: जाए मछरिया ने ललना

और भैया बहनों जो तो देखो आज को रमतुला कार्यक्रम अब अपने भैया बहनों को बता रहे हैं अगले रमतुला कार्यक्रम की कछु झलकियाँ। पहली झलकी अपन सुन है राछरो जीखो गा है कविता शर्मा, तो ले सुनो।

0: और भैया बहनों देखो, एक के संगे आज को रमतुला कार्यक्रम को टेम पूरा भाव है। अब अपने भैया बहन सुन रहे थे अपने भैया बहनन की पसंद पर रमतुला कार्यक्रम। श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रन पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। और भैया बहन हो देखो, अब अपन का बता रहे हैं आज की सीख। आज की सीख को विषय है तोय नहीं नबाऊ तोरे कुल खुआ नबाऊ। जा एक देखो बुंदेली कहावत है। ई को अर्थ जो ही है कि जो व्यक्ति अपनो कर्तव्य संबंध या जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाऊ तैयार है, वो अपने कोले या परिवार को मान सम्मान नहीं रखत। जा कहावत हमें भैया जे सीख देते है कि व्यक्ति को आचरण केवल उसी तक सीमित नहीं होत, बल्कि उके उसे पूरा परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहत है। ऐसे हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और रिश्तों को ईमानदारी से निर्वाह करो चाहिए। और भैया बहन देखो, हो रही है चलवे की बेरा, सो बता दें चलत चलत कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। कल अपने भैया बहन सुने ग्राम सभा में लोक मंजरी कार्यक्रम। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को कार्यक्रम हुआ है। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। भेंट वार्ता सुन है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह विषय पे डॉक्टर सोमदत्त त्रिपाठी से रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत। और आज की सीख हुई है तुला तुला से बैर है कुंभे ले गई चोट, कारक रास करी करी लंका डारी टोर। अपनो तपनो बदका हुई है जब तक अपनी बहन नंदनी खो देवा गया। भैया बहन हरो राम राम।
1: ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। रात्रि के 8 बजे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड,

0: की यह तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
1: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं, वो कैसे अपने विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभलकर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना, सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इसके इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई है प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर आर्थिक तौर पर उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको

0: बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के साथ।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
0: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस है, और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
1: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
0: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज है उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना, और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, नहीं हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है, और भारतीय आमतौर पर ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है, अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई एग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है, अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के और न्यूजीलैंड का भारत

0: के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो तीनों देशों की यात्रा है, इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहां हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शियरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहां पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहां पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे प्रदेश से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए और वहां सेटल हो गए, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और इस कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं डॉ JP शाक्य, अरुण देव खरे, डॉ ज्योति पयासी और डॉ राम सिंह पटेल।
4: आज की परिचर्चा का विषय है समान नागरिक संहिता, और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं श्री अरुण देव खरे। आप अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता हैं जिला एवं सत्र न्यायालय छतरपुर में। दूसरी प्रतिभागी हैं डॉ ज्योति पियासी, आप सहायक प्राध्यापक हैं, विधि की हैं पंडित मोतीलाल नेहरू वित्तीय महाविद्यालय छतरपुर। और तीसरे विद्वान के रूप में हमारे बीच में हैं डॉ राम सिंह पटेल, सह प्राध्यापक विधि पंडित मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय छतरपुर। आप सभी का स्वागत है। और इस समान नागरिक संहिता जो पूरे भारत में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके स्वरूप को यदि हम समझें तो हम देखते हैं कि समान नागरिक संहिता का अर्थ भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म, जाति और लिंग की परवाह किए बिना एक समान कानून लागू करना है। यह वर्तमान में विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह लेगा। इसका उद्देश्य लैंगिक न्याय यानी महिलाओं को समान अधिकार, धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। मूल रूप से देखा जाए तो लैंगिक भेदभाव की समाप्ति कर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए।

0: तथा आधुनिक और धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप भारत का संचालन करने के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया जा रहा है। अब हम सबसे पहले श्री अरुण देव खरे जी से जानना चाहेंगे कि आप समान नागरिक संहिता को किस रूप में देखते हैं।
1: सर, समान नागरिक संहिता से हम इस रूप में देखते हैं कि चूंकि हम देखते हैं कि अपने देश में, देश के बहुत सारे भागों में भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो समान नागरिक संहिता से जैसा अपना आशा ही है कि समान नागरिक संहिता यह सभी लोगों के लिए जो नागरिक समस्याएं हैं, जैसे विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, उत्तराधिकार है, गोद लेने की जो प्रक्रिया है, तो जितने इतने सारे जो नागरिक मामले हैं उसमें सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे, जाति से परे, लिंग से परे एक समान लागू हों। तो इसका उल्लेख हालांकि शुरू से ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में उल्लेख है इसका, तो इस 44 में उल्लेख ये है कि भाई इस तरह की समस्याएं जब आएंगी तो इन समस्याओं के होने के निराकरण में, जैसे इसके लागू न होने से नुकसान क्या है, तरह तरह की जातिगत, मानवीय, नैतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। UCC के लागू होने से मानवीय समस्याओं का समाधान, नैतिकता का बढ़ावा और विधि का पालन होगा, इसलिए हमारे मत में यह है कि इसका लागू होना बहुत अनिवार्य है।
0: डॉक्टर ज्योति प्यासी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक तो आदिवासी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और घुमक्कड़ जातियों को इससे अलग रखा गया है और शेष सभी भारत के नागरिकों के ऊपर यह समान नागरिक संहिता लागू, तो आपको क्या लगता है कि भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, ये सब अलग अलग हैं, तो समान नागरिक संहिता क्या लागू की जा सकती है इन सबके ऊपर समान रूप से?
2: इस विषय में मैं भी ये कहना चाहूंगी कि भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। कुछ समुदायों को आशंका है कि उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रभाव पड़ सकता है अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो। लेकिन जब हम बात करते हैं एक देश एक कानून, तो हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी नागरिक पूरे देश में सभी एक समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी अनुच्छेद के पालन को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 44 को लागू करने की बात, यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की जा रही है। बात आती है कि क्या ये आदिवासी, घुमक्कड़, अर्ध घुमंतु, इन पर लागू होना चाहिए या नहीं, तो एक बड़े सर्वे के बाद ये चीज सामने आ रही है कि इनका ऐसा मानना है कि इनकी जो संस्कृति है यही इनकी पहचान है, इन्हें इनकी संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है, जो आदिवासी हैं, जो वर्षों से इन परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। और अगर इन पर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो इनके जो विचार हैं, इनकी परंपराएं हैं, ये खत्म हो जाएंगी, और अगर ये खत्म होती हैं तो इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, हम न्यूज़पेपर में भी लगातार ये पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि जुलाई के शुरुआत में ही ये विधेयक, जो एक कमेटी बनी हुई है जिसमें रंजन देसाई, जो अपनी पहले न्यायाधीश रही हैं, जिसकी अध्यक्ष है कमेटी की, तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत अभी तक हो जानी थी, लेकिन यही बात विषय बीच में आ गया है कि क्या आदिवासियों और इन जनजातियों पर भी लागू होना चाहिए, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और रोक दिया गया है, और ऐसा है कि शायद जुलाई 20 के बाद जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उस पर ये रिपोर्ट पूरी आ जाएगी।
0: बहुत अच्छी बात आपने की है कि शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और लागू होगी। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर के अन्य सभी धर्म व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। पटेल सर, आप ये बताएं कि इससे मुसलमान संप्रदाय के लोगों को क्या आपत्तियां हैं और वो क्या चाह रहे हैं?
3: सर, यहाँ पर यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है,

0: समान लोगों के लिए समान विधि बनना पूरे देश की जरूरत है। ऐसे में अगर हम देखें तो हिंदू विधि 1956 के अंतर्गत हिंदुओं के लिए जो प्रावधान है जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण को लेकर के, तो महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और अपने अधिकारों को परिवर्तित करा सकते। वहीं पर अगर हम देखें मुस्लिम विधि के अंतर्गत, तो मुस्लिम विधि में महिलाओं के लिए एक सीमित अधिकार दिए गए, जैसे कि 3 बार तलाक तलाक तलाक बोल करके विवाह के लिए समाप्त कर दिया जाता है और मेहर की राशि देकर के महिला को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है और उसका और उसके बच्चों का तलाक के बाद क्या होगा इसका उसके पति पर कोई बंधन नहीं होता है। जबकि हिंदू विधि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यदि तलाक लिया जाता है तो तलाक ही एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट के माध्यम से तलाक होता है और उसके बाद न्यायालय के द्वारा भरण पोषण की राशि तय की जाती है और वह भरण पोषण की राशि उस तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से सभी धर्मों के लिए यदि एक समान नागरिक संहिता का निर्माण कर दिया जाता है तो यहाँ पर विभिन्न धर्मों की, खास करके मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं हैं उनका जो जीवन स्तर है वो उसमें सुधार होगा और काफी हद तक उनकी स्थिति में सुधार होगा और जो है मुस्लिम धर्म के कई जो कमियां हैं उसमें वो इससे सुधर सकेंगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने की है कि इसके लागू होने से समान जो नागरिक संहिता होगी वो सभी धर्मों के ऊपर एक साथ लागू होगी। हम जानते हैं कि यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोर्ट बिल शरीयत कानून विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों ना हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने के लिए यह नागरिक संहिता हमारे लिए बहुत समानता का काम करेगी। हम लोगों को सामूहिक रूप से एक जैसा भारत का जीवन जीने के लिए कानून की बात करेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि विरोधियों का ये भी कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। अब जब हम समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो क्या हमारे समाज में जो अन्य धर्मों के लोग हैं वह इसको सहर स्वीकार कर पाएंगे? ये बात मैं श्री अरुणदेव खरे जी के माध्यम से श्रोताओं को पहुँचाना चाहूँगा।
2: जहाँ तक जैसे बात आती है कि समान नागरिक संहिता, तो ये जब एक देश एक विधान लागू होगा तो उससे सभी को सुविधा मिलेगी, जटिलताएं दूर होंगी। रहा सवाल स्वीकार करने का और अस्वीकार करने का, तो चूंकि देश के हित में स्वीकार करना आवश्यक है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता पटेल साहब ने, बहन जी प्यासी जी ने ये बात रखी, तो जैसे मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। अभी इनने जो विवाह की और तलाक की जो व्यवस्था शब्द का उल्लेख किया है उसके विषय में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे में होता क्या है कि अपन अभी अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग व्यवस्था से विधि से संचालित होते हैं। जैसे विवाह है तो विवाह में अभी मान्यता क्या है कि हिंदू धर्म एक विवाह को मान्यता देता है, मुस्लिम धर्म बहुविवाह प्रथा को मान्यता देता है, पादरी की अलग व्यवस्था है, ईसाई धर्म की विवाह की अलग व्यवस्था है। इससे एकीकरण होने से जो लिंग संबंधी समस्याएं हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उसमें निजात मिलेगी। इसके मानने से ये होगा कि अभी हालात ये रहते हैं कि किसी मुस्लिम महिला ने किसी पुरुष से, मुस्लिम पुरुष से शादी की, उसके शादी करने के बाद उसके कई बच्चे हो गए, उसकी इच्छा बदली, उसने दूसरा विवाह कर लिया, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो मान्यता है, हमारा पर्सनल लॉ अलग कहता है कुछ। तो इसमें असमानता से मानवीय समस्याएं पैदा होती हैं, वहाँ शिक्षा का जो नवजात बच्चे हैं उनकी शिक्षा अवरुद्ध होती है, उसका जीवन स्तर अवरुद्ध होता है, उससे परिवार पे और समाज पे भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनको यूसीसी लागू करने से और उसको स्वीकार करने से प्रत्येक वर्ग को, देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ ही लाभ होना है, हानि कुछ भी नहीं है। ये केवल एक मिथ्या धारणा है कि इसके लागू होने से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, जी बिल्कुल हनन नहीं होगा।
1: हम देखते हैं कि आजादी के 75 सालों में

0: एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल संहिता को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। अभी धार्मिक संगठनों का विरोध हो रहा है, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है, इस संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कोई व्यक्तिगत कानून भी संकट में न आ जाए। दक्षिण भारत के लोगों को लग रहा है कि नए कानूनों से क्या होने वाला है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो वो देखते हैं कि दक्षिण भारत के लोग अपने रिश्तेदारों के बीच शादियां करते हैं, लेकिन यूसीसी इन सब रिवाजों को खत्म कर देगा। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। तो ज्योति जी, आप ये बताएं कि ऐसा संभव हो सकेगा कि हिंदू कानून की अवधारणा को पूरे अन्य धर्मों के लोगों पर भी लागू की जाए?
1: जी, ये बिल्कुल मिथ्या बातें समाज में सामने आ रही हैं। संविधान में हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 14 भी शामिल है और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 भी शामिल है। तो जिसमें हम देखते हैं कि दोनों ही हमारे मौलिक अधिकार हैं, समानता का भी अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। लेकिन इसी बीच हमारे एक केस आया है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम देखते हैं, जिसमें कहा गया कि अगर मौलिक अधिकारों में भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने वाले अनुच्छेद जाने 25, 26 से ऊपर अपनी स्थिति बना लेता है। दूसरी बात हम करें कि हमारे संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, सभी धर्मों को ये समानता देने का कार्य कर रहा है, सभी को अधिकार दे रहा है, और संविधान की रक्षा करने का जो अधिकार है, जो कर्तव्य दिया गया है, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो हम ना हिंदू अधिनियम को देखें, हम ना मुस्लिम अधिनियम को देखें, हम तो न्यायपालिका की बात अगर सुने तो हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम आते हैं कि न्यायपालिका लगातार कुछ वर्षों से अपने केसेस के माध्यम से ये संदेश देती आ रही है कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला केस हम लोगों ने देखा है साहबानो केस, जो 1985 में आया था। इस पर हाल ही में अभी एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें बताया गया कैसे एक मुस्लिम महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो उनके पर्सनल लॉ से संचालित हो रही है, और अगर वो सेक्शन 125 सीआरपीसी से अगर गवर्न हो तो उनको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन वो ना मिलकर उनकी जो व्यवस्था है, उनके जो व्यक्तिगत कानून से लागू होने के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय में दूसरा केस आया है सरला मुद्गल का केस 1995 में, और इसमें भी यही बात पुनरावृत्ति हुई है कि व्यक्तिगत कानून अलग अलग होने के कारण दो धर्मों के लोगों को इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर एक और केस है लिली थॉमस का मामला, जो 2000 में आया, जो ईसाई धर्म से संबंधित है। इसमें भी न्यायालय ने अपील की है कि सरकार से अपील की है कि जल्दी से जल्दी व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करके एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए, जिससे अलग अलग धर्मों के लोगों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है, इसे रोका जा सके। और सबसे नया केस जो हमारे बीच 2017 का है, सायरा बानो केस, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार से यही कहा कि लगातार इतने वर्षों से हम आपसे अपील कर रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास ही है, विधायिका के पास ही है। इसीलिए लगातार सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत कानून बनाया जाए। और अगर बात आती है अनुच्छेद 14 और धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 25-26 के बीच की विरोधाभास की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अलग अलग केसों के माध्यम से समय समय पर बताया है कि अनुच्छेद 14 अन्य अनुच्छेदों, अन्य अधिकारों से भी बढ़कर है।
0: बहुत अच्छी बात आपने की, और इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो समान नागरिक संहिता है, यदि वो लागू होगी भविष्य में, तो इससे कम 5 तरह के लाभ हमारे देश को होंगे।

0: पहला तो यह कि सभी नागरिकों को समान दर्जा मिलेगा, दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह कानून काम करेगा, तीसरा युवा पीढ़ी की आशाओं को पूरा करने के लिए यह कानून सक्षम होगा, चौथा राष्ट्रीय एकता को सुगम बनाने के लिए यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और पांचवा मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव के लिए विवादास्पद विषय को बचाया जा सकता है। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कानून है। मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल जी से पूछना चाहूंगा कि आप तो विधि के ज्ञाता हैं, तो आपकी दृष्टि में समान नागरिक संहिता से मुख्य और लाभ क्या हो सकते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए।
1: समान नागरिक संहिता से एक तो सभी धर्मों में समानता का भाव आएगा पूरे देश में, खास करके जो आधी आबादी महिलाओं की है उन महिलाओं में एक समानता का भाव आएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुस्लिम धर्म में जहां पर महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित कर दी जाती हैं, तो समान नागरिक संहिता लागू होने से उस आधी आबादी का जीवन स्तर सुधरेगा, मुस्लिम महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा, चाहे वो तलाक से संबंधित मामले हों, चाहे भरण पोषण से संबंधित मामले हों, चाहे उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान हों, हर संबंध में जब संपूर्ण देश में एक कानून एक जो है तो एक देश एक कानून सामने लाया जाएगा, तो इसका निश्चित तौर पर संपूर्ण समाज को लाभ मिलेगा। और इसी समानता के लिए समय समय पर संविधान सभा के सदस्यों ने भी अपेक्षा रखी थी, और इसी कारण से संविधान में अनुच्छेद 44 को शामिल किया गया था और कहा था कि जब समय आए तो हमारे विधानमंडल के द्वारा एक समान नागरिक संहिता बना करके समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिए जाएं। और आज हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए एक समान नागरिक संहिता बनाएं और उसे देश में लागू करें, जिससे संपूर्ण देश में एक समान भाव उत्पन्न हो।
0: बहुत अच्छी बात है आपकी कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन इसके जो कुछ लोग हैं उसमें कुछ दोष भी देखते हैं। जैसे वो ये मानते हैं कि भारत की विविधता के कारण इस कानून को लागू करने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। दूसरा यह कि यह मानना कि यूसीसी किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि प्रत्येक संविधान हमें ये अनुमति देता है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, उसका प्रचार प्रसार करे, उसको बढ़ावा दे, तो यह कानून वहां पर भी बाधक सिद्ध हो सकता है। तीसरा उनका आरोप यह है कि ये निजी मामलों में राज्य का हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा ये कि एक नाजुक और कठिन काम है, क्योंकि बहुधर्मी देश है, अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो उनकी रीत नीति परंपराएं आचार विचार सब अलग अलग हैं। यदि हम उनको एक समान करना चाहें तो ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है, इसलिए वो मानते हैं कि अभी ये बदलाव उचित नहीं है। मैं खरे जी से पूछना चाहूंगा कि आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि अभी यह कानून लागू होना चाहिए कि इसकी और समीक्षा होना चाहिए।
2: सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे मतानुसार इसमें समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है और इसको अविलंब लागू होना चाहिए। इससे भिन्न भिन्न धर्मों की जो संचालित व्यवस्थाएं हैं उससे जो होने वाली जटिलताएं हैं वो उनका समापन होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी बहन जी ने बात रखी थी सरला मुद्गल वाली केस की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाली केस में 1995 में ये व्यवस्था दी थी। उस केस में मैटर ये था, एक व्यक्ति क्या करता है कि वो एक शादी करता है, शादी के बाद उन दोनों के बीच में 5-7 साल तक उनका वैवाहिक जीवन चलता है। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह जाकर के दूसरी धर्म की महिला से शादी कर लेता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो पहले वो हिंदू विधि से संचालित हो रहा था और उसने मुस्लिम धर्म की महिला से जाकर के धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली, तो वो अब उसका बचाव ये होने लगा कि चूंकि अब मैंने धर्म का परिवर्तन कर लिया है इसलिए ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। तो ऐसी दशा में इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भाई ये तो इसका दुरुपयोग है, जो धार्मिक अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरला मुद्गल वाली केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस व्यक्ति ने क्या किया कि केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन

0: किया है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, वैध नहीं है। और जब तक पहली पत्नी से विधिवत रूप से विवाह विच्छेद न हो जाए तब तक वो विवाह मान्य नहीं होगा। और दूसरी शादी अगर वो करता है विवाह विच्छेद के बगैर, विधिवत विवाह विच्छेद के बगैर, तो वो एक दंडनीय होगा। तो इसके लागू होने से ये सारी जो असमानताएं और जटिलताएं विभिन्न प्रकार की, ये सब इनका समापन होगा। इसलिए मेरे मतानुसार इसमें समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है, समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, इसको अविलंब लागू होना ही चाहिए।
1: ज्योति जी, आपने पहले हमसे कहा था यहाँ पर चर्चा करते हुए कि जुलाई में ही ये लागू हो जाएगा। यदि लागू हो जाता है
2: जी,
1: तो क्या भारत के पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, पूरे देश के संदर्भ में बात करते हैं
2: जी,
1: जब हम ये मानने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं कि एक देश है, एक निशान है, एक विधान होना चाहिए
2: जी,
1: तो आप देखते हैं कि इसको लागू होने के बाद क्या इसका विरोध और तेज होगा या लोग अपनी सहमति के साथ समान नागरिक संहिता का पालन करेंगे?
2: जी, बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अभी दिमाग में यही सवाल चल रहा है और सरकार के दिमाग में भी यही सवाल है, इसीलिए लोगों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। देखिए, एक प्राध्यापक होने के नाते मैं ये दावे से कह सकती हूँ, समाज में जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका विरोध कुछ लोगों द्वारा सामने आता ही है, लेकिन जब उसके लाभ दिखाई देते हैं तो वो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच भी हैं, जैसे बहुत सारी कुप्रथाएं रही हैं, लेकिन अब धीमे धीमे हमारा समाज उनसे उन्हें पीछे छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम आधार की बात करें तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें जो अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता, ये नीति निदेशक तत्व के तौर पर रखा गया है, अर्थात कि संविधान के बाकी जो प्रोविजंस हैं वो तो लागू हो जाएंगे, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं इन्हें तब लागू किया जाए जब देश जो आधार कानून है उनको पूरा कर ले, जो आधार चीजें दी गई हैं संविधान में और भी उनको पूरा कर ले, उसके बाद ही नीति निदेशक तत्व लागू होंगे। तो आज वर्तमान स्थिति है कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है और अब वो इस स्थिति में है कि नागरिक संहिता को से लागू करा जाना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता केवल कानूनी विषय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक विषय भी है। इसका उद्देश्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, वहीं भारत की विविधता और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी निर्णय में संवाद, संवैधानिक मूल्यों और सभी नागरिकों के हितों का संतुलन आवश्यक है, इसके लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए।
1: आप सभी ने बहुत अच्छे विचार अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किए। निष्कर्ष के रूप में हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी UCC भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक संप्रदायों पर लागू होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह मुद्दा एक सदी से भी अधिक समय से राजनीतिक कथा और बहस के केंद्र में रहा है और आज भी ये केंद्र में है। मैं समझता हूँ कि जिस समय भारत सरकार इस समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी तो जितने भी विरोध हैं अपने आप स्वतः शांत हो जाएंगे और निश्चित रूप से भारत में एक देश है, एक विधान है, तो एक निशान होना ही चाहिए और सारी चीजें हैं तो फिर समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। आपने इस पर चर्चा में भाग लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉ जेपी शाक्य, अरुण देव खरे, डॉ ज्योति पयासी और डॉ राम सिंह पटेल। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुत

0: वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री

0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दो वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क

0: रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक

0: की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askyar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake 3-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges. Further reinforcing endorsing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-1-6 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीजों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों के इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछे, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया है कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी, रवी।
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
3: जी सबसे पहले तो विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर

0: कैसे हो? क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी आया है, फ्रॉड भी है, तो डिजिटल साक्षर क्या कैसे प्राप्त करे, और ये इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET, नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
2: जी।
1: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफी मटेरियल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 और इवन 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
2: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
2: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग, आपस में जो पीयर टू पीयर, मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
2: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी, जितना भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मेरा एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा।

0: आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए, जब आप किसी सर्विस को लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: सभी को नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
3: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक थर्ड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
3: नमस्कार,
1: नमस्कार जी, नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी हैं?
3: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
3: स्टूडेंट्स
4: जी सर।
3: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है।

इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड, बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या एनपीटेल नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें आईआईटी कानपुर या आईआईटी के बड़े एमटेक मास्टर्स पीएचडी के कोर्स से लेकर के, और जो आपके ट्वेल्थ के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के आईएम्स के मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट

0: और जो आपके ट्वेल्थ के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, आईएम्स के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल, चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर को। मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
3: धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उसपे बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है, वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया, उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर आपको मैंने बता दिया है, और

0: की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जितनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियां कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती है कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूं। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आपको ये जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं है तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत

0: डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पे विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मीडियम वेपर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।
1: ओ, संजना।

आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला। स्वीकारिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है, हर जगह मेघ जमकर बरस रहे हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ चुकी है, किसान भी खुश हैं और हम सब मेघों की इस बारिश से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शुरुआत तो ऐसे ही गानों से बनती है ना।

कार्यक्रम का पहला नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा गीत, सलिल चौधरी का संगीत और फिल्म का नाम था परख। कार्यक्रम का अगला गाना योगेश का लिखा हुआ, संगीतकार हैं आरडी बर्मन, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मंजिल। ये गाना आपका जाना पहचाना है और इस सीजन का बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और आप सभी ने हमको फरमाइश भेजी है। जसपुर उत्तराखंड से रियाजत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज इरफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, ये राजस्थान से हम तक पत्र भेज रहे हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक और मीका विरक। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश ने हम तक पत्र भेजा है। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, जना अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा और धनेश्वरी। चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा ने हम तक पत्र भेजा है। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। अगला पत्र है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर मंजिल फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, बारिश का ये महीना ऐसा ही होता है। मई और जून की बेतहाशा गर्मी और उमस के बाद जब ये बादल बरसते हैं तो हमारे दिल को और मन को एक गजब सा सुकून दे जाते हैं, और ऐसे में दो प्रेमी जरूर तड़पते हैं अगर वे साथ ना हों और जुदा जुदा हों। कुछ ऐसे ही गीतों की फरमाइश लेकर और इसके अलावा अन्य गीत भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और आप सभी की पसंदों का ध्यान रखते हुए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है मन भवन। आज क्रम है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशों का, तो आपके पत्र मेरे सामने पूरे ढेर लगे हुए रखे हुए हैं और आपकी पसंद मैं साथ में बोलता जा रहा हूं और आपकी पसंद के गीत भी सुनवा रहा हूं। मंजिल फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने खूबसूरत से शब्द लिखे थे और उन्हें अपनी एक बेहतरीन धुन में पिरोया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की, संगीतकार एक बार फिर से आरडी बर्मन और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, राम बिहारी शास्त्री, राजा भैया, अभय और कार्तिक तिवारी। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामतुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। डोंगरगांव राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ग्राम गेंदा टोला से लिखने वाले हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता और गजेंद्र कुमार गुप्ता। कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, राम बिहारी ने यह हम तक पत्र भेजा ही है। और इसके अलावा महादेव घाट अम्बलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा। तो लीजिए 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की मनमोहक आवाजों में।

वैसे तो अभी दो लोग साथ में चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी रिमझिम बारिश हो, इतना शानदार मौसम हो, हवाएं चल रही हों ठंडी ठंडी, और मई और जून की उमस से आपको राहत मिल रही हो, ऐसे में कोई अजनबी हसीना से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो फिर वो दिन कुछ खास बन जाता है। कुछ ऐसा ही कहने वाला है ये अगला गाना, जो आप सभी की फरमाइश पर हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पसंद करने वाले हैं यश चव्हाण, अंश चव्हाण, संदीप माधवी चव्हाण, बनोसा दरियापुर।

अमरावती से, कनेरा मोहल्ला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश तथा हार्दिक, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष, अमरपुर से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता और दिशा तथा लवी, पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू, बेरेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, चार मीनार चौक गढ़ई पड़रिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी, कोलपुर उदयपुर राजस्थान से गोपाल नैणवाया, कांता, विवेक, मनीष, प्रांचल और लक्षिता। अजनबी फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक बार फिर से संगीतकार हैं आरडी बर्मन, आनंद बख्शी की रचना, आवाज किशोर कुमार की।

0: 爹，我是我们家的。
1: 本山的。
0: 好。
1: 哦，यहीं पर
0: यहीं
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना, संगीतकार आरडी बर्मन, फिल्म का नाम था अजनबी। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला।

अमर प्रेम फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, आनंद बख्शी की रचना, संगीतकार आरडी बर्मन। कार्यक्रम लगातार हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अगला गीत अब आप सभी को थोड़ा सा एक अंदाज करना है कि आखिरकार ये कौन सी फिल्म का गाना है और इसमें गीतकार संगीतकार कौन है, आवाजें किसकी हैं। लेकिन पसंद करने वाले श्रोता मित्र, जो पिछला गीत था और ये गीत, इनके हम आपको बताने जा रहे हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवाड़कर सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाड़कर परी। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेकवार, विनीता रेकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरत हल्ले, लल्लू और ऋषि रेकवार ने हम तक ये पत्र भेजा हुआ है। इसके अलावा ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, रविंद्र, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु और रोनिका यादव, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मास्टर मयंक, तन्वी गौहर, दामोहल्ला पन्ना से कौशल, किशोर मट्टू, संगीता, हर्षित और वैभव, ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और सौरभ, जटपुरा पनवाड़ी से देवीदीना हिरवार, सुनीता हिरवार और दिनेश कपिल, पूजा हिरवार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी और अंश लक्ष्मी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, पुराने श्रोता दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, ये खुद लिखकर भेजते हैं कि पुराने श्रोता हैं और निश्चित तौर पर पुराने हैं, कोई इसमें बहस की बात नहीं है, न कोई सोचने वाली बात है। दरियापुर बाबली से गजानन येले, उज्जवलताई येले, नवदीप और विश्वदीप येले, और एक बड़ा ही मजेदार पत्र आया है। ये पत्र हम तक आखिरकार कैसे पहुंच गया, ये हम भी आश्चर्य में हैं, क्योंकि इसके पते में लिखा है सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश, लेकिन ये पहुंच गया है आकाशवाणी छतरपुर। और इस पत्र में सिर्फ और सिर्फ राम राम राम राम लिखा हुआ है दोनों तरफ, यानी कि ना तो इसमें फरमाइश है, ना किसी का नाम लिखा हुआ है भेजने वाले का, लेकिन पते में जो लिखा है वो सन्यासी बाबा लिखा है। लेकिन अब ये कहिए कि पता नहीं कि आकाशवाणी में कौन सन्यासी है, तो ये पत्र हम तक किसकी कृपा से आ पहुंचा है, लेकिन हमने ये आपको बता दिया कि इस तरह का भी पत्र हमारे तक आया हुआ है। प्रमिलागंज आलोट रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल ने हम तक पत्र भेजा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और उनके बहुत सारे दोस्त, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगरदेवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षताई और राहुल डोंगरदेवे ने हम तक पत्र भेजा है। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस कत्री, शफी कत्री, इद्रीस, नूर मोहम्मद, कासिफ हासिम और इरफान मीना का पत्र हम तक आया हुआ है। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, नवासा रहन बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख और नुसरत जहां नाज, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज की ये चिट्ठी हम तक पहुंची है। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु ने भेजा है और भाटापारा से सोहन

जोशी, धनेश तिवारी, हरमिंदर चावला और कुमारी रागिनी का पत्र आया हुआ है। तो अब कार्यक्रम का जो अगला गीत है वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन आप तक छोड़ भी रहे हैं, थोड़ा सा अंदाज लगाइए। हालांकि आप लगातार आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, विभिन्न केंद्रों से जुड़े रहते हैं, तो आपको गायकों की आवाजें भी पता हैं, गीतकार संगीतकार भी पता है और फिल्मों के नाम भी पता रहते हैं, लेकिन फिर भी एक चांस तो लेना बनता ही है। लीजिए आपकी पसंद पर आपकी नजर ये नगमा।

अब जब याद आ ही गई है तो फिर निश्चित तौर पर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी और फिर कुछ वादे भी होंगे। ये गाना अभी आप सुन रहे थे चरस फिल्म से, जिसमें अपनी आवाजें दी थी आनंद बख्शी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा नगमा था, जिसे अपने संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और जैसा मैंने कहा था कि जब याद आई है तो याद के बाद फिर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी और मुलाकातें होने के बाद अगली बार मिलने के वादे भी होंगे। जी हाँ, ये वादा रहा फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गुलशन बावरा की शब्द रचना है, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। पसंद करने वाले कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी, प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और अदीबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार ने भी हम तक चिट्ठी पहुंचाई हुई है। मामुलवाड़ी नांदुरा से सोपान तायडे, विजय तायडे, अमोल आड़ी और सरिता तायडे, जिगांव नांदुरा से वसंतराव भोजने, सुनंदा, राजू और सोनू भोजने ने भी हम तक चिट्ठी पहुंचाई हुई है अपनी पसंद की। महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी, महिमा और नीतू वैद्य, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा का भी पत्र हम तक आया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हम तक ये पत्र भेज रहे हैं। और इसके अलावा जिला पन्ना से एके पांडे ने भी इस गाने की फरमाइश की है। तो आप सभी लोगों के पत्र लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हालांकि जब से ये मेल की सुविधा हुई है और सोशल मीडिया में अपनी फरमाइशें लिखने की सुविधा मिली है, तब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पत्रों का सिलसिला थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। कई लोगों की ये शिकायत है कि हमारे पोस्ट ऑफिस में हमको पोस्ट कार्ड नहीं मिलते, कई लोगों की अन्य शिकायतें हैं, लेकिन सबसे चूंकि सुविधाजनक बात यह है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपका ईमेल है, तो आपने तत्काल मेल पर अपनी पसंद लिख दी या फिर सोशल मीडिया पर अपनी पसंद भेजते हैं। लेकिन श्रोताओं, दोस्तों, मित्रों, पोस्ट कार्ड का, आपकी चिट्ठियों का एक अलग महत्व है। उनका आकाशवाणी में एक रिकॉर्ड रहता है। आपकी राइटिंग, आपके नाम, आपकी पहचान यहां पर मुफीद रहती है और ये एक बड़े रिकॉर्ड का काम करती है कि आज के जमाने में भी, जब हम 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर, मोबाइल और एआई के युग में अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे हमारे श्रोता मित्र ऐसे

भी हैं जो अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति बचाए हुए हैं। कभी पोस्ट कार्ड लिखकर भेजते हैं, कभी अंतर्देशी भेजते हैं, कभी एक लिफाफे में अपनी चिट्ठी डालकर भेज देते हैं और ये कहते हैं कि हमको अपनी पसंद का गाना सुनवा दिया जाए। तो आप सभी के खतों का निश्चित तौर पर हमको इंतजार रहता है, क्योंकि ये ऐसी खुशबू लेकर आते हैं जो आपके हाथों की महक यहां पर हमारे स्टूडियो में बयां करती है और वो महक पूरे स्टूडियो में घुल मिल जाती है और उसी के साथ आपके गीत भी आप तक पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये खुशबू आप तक पहुंचती होगी हमारी बातों के माध्यम से, हमारे गीतों के माध्यम से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना, आप सभी की पसंद पर हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज, गुलशन बावरा के गीत हैं और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

श्रोताओं, ये वादा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब जुदाई होती है तो उसका जो असर होता है वो बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि जुदाई ने सिखा दी है मोहब्बत की हकीकत, जुदाई ने सिखा दी है मोहब्बत की हकीकत, मिलन में जो न समझे थे वो तन्हाई में समझे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें उन पलों का ख्याल नहीं रहता, लेकिन फिर जब तन्हाई होती है तो फिर उस मोहब्बत की हकीकत समझ में आती है कि वाकई वो समय कैसा था। और इसके बाद फिर कुछ यूं भी कहा गया है कि बिछड़ना भी मोहब्बत की एक रस्म है शायद, बिछड़ना भी मोहब्बत की एक रस्म है शायद, जो बिछड़ते हैं वही फिर मिलने की दुआ करते हैं। तो मिलना और बिछड़ना ये जिंदगी के ऐसे पहलू हैं जो जीवन में लगातार घटित होते रहते हैं, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि ये सिलसिला बरकरार रहे। सिर्फ मिलना भी बहुत काफी नहीं होता, क्योंकि इसके बाद फिर जब आपके पास बहुत सुख ही सुख हो तो फिर उस सुख का महत्व नहीं रह जाता, लेकिन बीच में अगर कभी दुख आते हैं तो आपको वो घड़ियां याद आती हैं। हम आपकी पसंद के गाने लगातार आपको सुनवाते चले आ रहे हैं, और लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गाना आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन पसंद अगले गाने के साथ, दोनों की मिली जुली फरमाइश के साथ।

जांबाज फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सपना को। इंदीवर का गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और लीजिए, कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो चला है। बेताब फिल्म का गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्यक्रम के अंत में। लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज से, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत। और पसंद करने वाले हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक, मीका विरक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, कटकहा पन्ना से, प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अमेश, कृष्णा और प्रांशी सेन, दौलतबाग मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता, महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद वरुड़ जौलका से हम तक पत्र भेज रहे हैं। नांदरखेड़ वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति, बिलसराय से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमजी चक्रवर्ती, दिनेश, कपिल, पूजा देवी, देवीदी नहरवार, सुनीता देवी और समस्त परिवार, पनवाड़ी, जनपुरा, महोबा से हम तक भेज रहे हैं। पजौनी जालौन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, चंसोलिया, बेरेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक और तनु और बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि प्रमिलागंज आलोट रतलाम से भेज रहे हैं। तो लीजिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म से।

पसंद करने वाले अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, स्वीट बेबी कव्या, ग्राम पोस्ट खलीलपुर, जिला जालौन से अंजलि जाटव, राघवेंद्र आकांक्षा और ऋषि जाटव।

श्रोताओं के पत्रों और उनकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन लेकर आपके साथ मैं था आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला। और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। चिट्ठियां लगातार भेजते रहिए, मेल्स लगातार भेजते रहिए, सोशल मीडिया पर मैसेज भेजिए, लेकिन चिट्ठियों की बात ही कुछ अलग है, उनकी मिठास कुछ अलग है, उनकी खुशबू कुछ अलग है, इसलिए ये परंपरा लगातार कायम रखिए। नमस्कार।

श्रोताओं के पत्रों, उनकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम मन भवन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पल में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे

0: 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह अपने प्रातःकालीन कार्यक्रमों के साथ 5:55 पर इसी मीटर पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।